अभी आप ललिता घोष की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अल्ताफ राजा की आवाज़ में ये नात।

0: नुसरत वसीम की गाई इस नाद के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी की श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 5:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें कटहल की खेती के संदर्भ में। सभी उत्पन्न होने वाले फलों में कटहल का वृक्ष सबसे अधिक पैदावार देता है, जबकि इसकी अधिक देखभाल की आवश्यकता भी नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, कटहल के पके फलों का कोआ खाया जाता है तथा कच्चे फलों का उपयोग सब्जी व अचार के रूप में करते हैं। इससे सिरप व जैक लेदर भी तैयार किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने तथा इमारती लकड़ी के रूप में भी करते हैं। कटहल के फलों में प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, वसा व खनिज पदार्थ आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका कि मनुष्य के भोजन में महत्वपूर्ण योगदान है। कटहल की खेती के लिए हमारे इन द्वीपों की जलवायु काफ़ी उपयुक्त है। यूं तो सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हो सकती है, पर गहरी दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मिट्टी में नमी धारण करने की शक्ति हो, परंतु पानी का निकास बहुत अच्छा होना आवश्यक है। कटहल के पेड़ों का प्रवर्धन अधिकतर बीज द्वारा होने से कटहल में कोई स्थायी किस्म नहीं है। फिर भी फलों के आकार, बनावट व स्वाद तथा स्वभाव आदि के आधार पर रुद्राक्षी व सिलोन जैक किस्म के नाम से कटहल को हम पहचानते हैं। रुद्राक्षी किस्म के फल छोटे आकार में मिलते हैं, ऊपर की छाल लगभग चिकनी तथा गूदे की मात्रा अधिक होती है।

0: सिलोन जैक पौध लगाने के 2.5 वर्ष बाद फल देने लगता है। इसकी पौध लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 12 मीटर रखें तथा 90 घन सेंटीमीटर यानी 90 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा तथा इतना ही गहरा गड्ढा बना दें। इसमें कम से कम 4 टोकरी गोबर की सड़ी खाद भर दें। पौधों की अच्छी वृद्धि व सफल फल उत्पादन के लिए 80 किलोग्राम गोबर की खाद प्रतिवर्ष वर्षा के महीने में प्रति पौधे को दें। गर्मियों में छोटे पौधों को 3 से 4 दिन के अंतर पर सिंचाई दें। थालों से खरपतवारों को निकालते रहें व गर्मी में मल्चिंग कर दें जिससे नमी को सुरक्षित रखा जा सके। प्रौढ़ वृक्षों में रोगग्रस्त सूखी या मरी हुई तथा अधिक घनी शाखाओं को काटते रहना चाहिए। पौधों की छोटी अवस्था में जब वे पूर्ण स्थान घेरने में असमर्थ रहते हैं, बहुत सी सब्जियों को जैसे कि टमाटर, मूली, गाजर आदि को आप लगा सकते हैं। इसके अलावे फलों जैसे पपीता, अनानास आदि की खेती भी अंतराशस्य फसल के रूप में हो सकती है। बीजू पेड़ लगाने के 8 से 10 साल बाद फल देने लगते हैं। कटहल में नर व मादा फूल एक ही पेड़ में अलग अलग लगते हैं। नर फूल निकलने के कुछ दिनों बाद मादा फूल का निकलना शुरू होता है और फिर ये दोनों साथ साथ निकलते हैं। मादा फूल का डंठल नर फूल के डंठल से मोटा होता है। परागण हवा द्वारा होता है। परागण के बाद फल तैयार होने में लगभग 3 महीने लगते हैं। किसान भाइयों, एक पेड़ से लगभग 400 किलोग्राम फलों का उत्पादन मिल सकता है। कटहल के फल परिवहन में खराब नहीं होते, अतः इन्हें दूर दूर स्थानों तक सुगमतापूर्वक भेजा जा सकता है। कटहल एक सहिष्णु फल है। इसको कीड़ों से कोई विशेष हानि नहीं होती, फिर भी शूट बोरर कैटरपिलर कोमल प्ररोह तथा कलियों में छेद करते हैं तथा इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा कीड़ा मिलीबग है जो कि पत्तियों व कोमल प्ररोहों से रस चूसता है। इससे ये सूखने व गिरने लगते हैं। इसके लिए गंधक का बुरकाव करें या चूना गंधक का छिड़काव करें। जैक स्केल नामक कीड़ों से भी कटहल के पौधों को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावे कटहल के बागान में कुछ एक बीमारियों का भी प्रकोप होता है, जिसके लिए आप अपने बागान की निगरानी करते रहें और पौधरक्षा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार नियंत्रण के उपाय करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने

0: रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे हैं। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारतसीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी आज ही रात 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, ननकौरी, माकाचुआ और आफ्रा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर एमवी सेंटिनल आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान रविवार 16 तारीख को रात 9 कैमल बे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के

0: बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा जलियान। आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलियान। आज दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV रंगत आज दोपहर बाद 2:30 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा जलियान। कल शुक्रवार 14 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। और अब सुनिए कल शुक्रवार 14 तारीख को जाने वाले जलियानों के बारे में। MV रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शुक्रवार 14 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन शनिवार 15 तारीख को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर नालंदा जलियान कल शुक्रवार 14 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलियान। अगले दिन 15 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शुक्रवार 14 तारीख को प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV स्ट्रीट आइलैंड कल 14 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलियान। कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शुक्रवार 14 तारीख को प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 14 तारीख को दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा जलियान। कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल 14 तारीख को दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा जलियान। कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी कल ही दोपहर बाद 3:30 पर। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV स्टेट आइलैंड कल 14 तारीख को दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा जलियान। कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को गीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए आवाज की नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही आंखों में चमक और दिल में गर्व पैदा हो जाता है। ऐसा ही नाम है हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान का। दोस्तों, जो है हमारी शान, जो है हमारी जान, वो है हिंदुस्तान।

0: हिंदुस्तान, इसकी मिट्टी में हमारे पूर्वजों के सपने बसे हैं। इसकी हवाओं में शहीदों की कुर्बानियों की खुशबू है। इसकी नदियों में सदियों की सभ्यता बहती है और इसके तिरंगे में करोड़ों भारतीयों की आशाएं लहराती है। जी हाँ, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म है, फिर भी दिल एक है, भावना एक है और हमारी पहचान एक है।
1: हिंदुस्तान की कसम।

दोस्तों, हमारी पहचान और हमारा गर्व है हमारा देश हिंदुस्तान। ये वो धरती है जहां हम सभी मिलकर सप्रेम रहते हैं। हमारा देश अपनी सुंदर प्रकृति, महान संस्कृति और वीर जवानों के लिए जाना जाता है। हमारे सैनिक हमारे देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे किसान मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं और हमारे बच्चे देश का भविष्य है। जी हाँ, ऐसी धरती है हमारे हिंदुस्तान की।

0: देश से सच्चा प्यार तब होता है जब हम ईमानदारी से अपना काम करें, अपने देश को साफ रखें और दूसरों की मदद करें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने हिंदुस्तान को और बेहतर बनाएंगे और हमेशा अपने देश का सम्मान करेंगे। इसी संकल्प के साथ अब दीजिए कार्यक्रम से इजाजत अपनी दोस्त गीता को। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी गीता। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 329वीं कड़ी।

युद्धरत कुंभकर्ण का घोर गर्जन सुनकर देवता भी भयभीत हो गए हैं। कंदरा की भांति खुले उसके मुख को श्री राम ने अपने वाणों से भर दिया, फिर भी वो धराशायी नहीं हुआ। वो श्री राम पर प्रहार करने दौड़ा ही था कि उन्होंने एक तीखे वाण से उसका सिर काट दिया। कुंभकर्ण का कटा सिर जाकर रावण के सामने गिरा, जिसे देख वो व्याकुल हो गया। इधर कुंभकर्ण के रुंड को इधर से उधर दौड़ते छटपटाते देख राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और धरती डोलने लगी। श्री राम ने उसके धड़ को दो टुकड़ों में काट दिया। पर्वत खंडों की तरह दोनों टुकड़े धरती पर आ गिरे। ये दृश्य देख देवताओं ने हर्षध्वनि की और प्रभु का गुणगान करने लगे। ये कथा सुनाते हुए भगवान शिव बोले, हे गिरिजे, इस प्रकार कुंभकर्ण जैसे अधम पापी राक्षस को भी प्रभु ने अपने हाथों सद्गति प्रदान की।

अभी आप रामचरितमानस गान के 329वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत लीजिए अब सुनिए कुछ देशगान।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देश गान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी जानकारी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तट पर वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 15 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:00 सुनिए जन सूचनाएं, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा 7:05 पर। 7:15 पर देश गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, जबकि आप विविध भारती मुंबई से ठीक उसी समय सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर पर्यावरण कार्यक्रम के तहत डॉक्टर मंजू नायर से ली गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। साथ ही आप कुछ फिल्मी गीत भी सुन पाएंगे। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे अशोक खोसला और सोनू निगम। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तरानी सुहाने का लुत्फ उठाइए 9:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर ML वसंता कुमारी का कर्नाटक शैली में गायन आप सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम SMS माई चॉइस का आनंद लीजिए 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1349वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। चित्रगीत कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम

में श्रोता कुछ गीत सुन पाएंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर सुगम संगीत कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप बाबुल सुप्रियो को सुन पाएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम का आनंद लीजिएगा 1:30 पर। और दोपहर बाद 2:30 मौसम की जानकारी के बाद हमारी प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा नॉन स्टॉप म्यूजिक। और 3:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम से, जिसमें सूचनाओं के अलावा ककाना गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आप सुन पाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की नवी कड़ी प्रसारित की जाएगी शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर हम आपको कार्यक्रमों के विवरण से अवगत करवाएंगे। बहारों की शाम फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। बांग्ला कार्यक्रम में 5:30 पर सुनिए चिरंतनी के तहत रविंद्र संगीत। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आटम पहाड़ निवासी श्रीमती टी राजेश्वरी से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी, बकरी पालन आजीविका का साधन। महफिल कवाली कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए 6:30 पर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी के तहत पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान, जबकि रात 10:00 आप विविध भारती मुंबई से सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:00 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम और रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सम्भाषमाणः मन्त्री अकथयत् यत् सर्वकारः स्वयं वदति यत् सः चर्चायै सन्नद्धः अस्ति तथा च प्रश्नानाम् उत्तराणि दास्यति, किन्तु विपक्षः उत्तराणि श्रोतुं न वाञ्छति, चर्चायाश्च पलायनं करोति।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: भारतीय रेल विभागेन पश्चिम रेल विभागस्य गैरातपुर अहमदाबाद खण्डे चतुर्मार्गीय उपरि सेतोः निर्माणार्थं 53,100 कोटि रूप्यकाणां परियोजना स्वीकृतास्ति। रेल मन्त्रालयेन सूचितं यत् एषा परियोजना पश्चिम रेल विभागस्य अम्ब्रेला वर्क इत्याख्यस्य छत्रक कार्यक्रमस्यान्तर्गतं मार्गीय परिष्कारार्थं सेतूनां पुनर्निर्माणार्थं स्वीकृता अस्ति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् रेल सेतु भागस्य समग्र दीर्घता 6.1 मीटर मिता भविष्यति। अस्मिन् 53 मीटर परिमितं प्रत्येकमपि द्वौ संयुक्त गीडर भागद्वयं समाविष्टमस्ति। हरघर तिरंगा इत्यभियानस्य भागरूपेण जम्मू कश्मीरस्य रियासी मण्डल प्रशासनेन जनसामान्यानां हृदयेषु देशभक्तिभावनायाः संवर्धनाय चिनाब नद्याम् एका विशाल तिरंगा नौकायात्रा आयोजिता। स्वतंत्रता दिवसात् पूर्वं एतत् अभियानं समग्रे देशे तीव्रगतिं भजते, यत्र विविध प्रदेशेषु देशभक्तिपूर्ण यात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणां अन्येषां च विविधानां आयोजनानां उत्सवः आचर्यते। भारत ऋतु विभागेन उत्तर बंगाल खात्याः उपरि न्यूनचाप क्षेत्रस्य निर्माणस्य पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति, येन अद्य ओडिशा राज्ये गांगेय पश्चिम बंगाल प्रदेशे च अत्यधिक वृष्टिः भवितुम् अर्हति। ह्यः नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप क्रीडायाः तृतीय दिने भारतीय फेंसिंग इत्यनेन दलेन विभिन्नेषु वरिष्ठ व्यक्तिगत स्पर्धासु त्रीणि स्वर्णपदकानि, एकं रजतपदकं, एकं कांस्यपदकं च प्राप्तम् इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 90% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:08 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40। और अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 292397 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान 2936 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा आज दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। और अब एक सूचना।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य

सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। आज होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए यातायात व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन का प्रसारण करेगा। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 10 नए रबराइज्ड इन्फ्लेटेबल बोट्स पुलिस मैरिन फोर्स में शामिल किए गए और कोलकाता से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल सुबह 6 बजे तक श्री विजयपुरम पहुँचने की संभावना है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। आज होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए यातायात की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अनुसार वीआईपी और पास धारकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहन नेताजी स्टेडियम के अंदर सुबह 8:30 बजे तक पार्क करने होंगे। गुलाबी पास धारकों के वाहन अंडमान क्लब और स्पोर्ट्स हॉस्टल के सामने पार्किंग क्षेत्र में सुबह 8:15 तक पार्क करने होंगे। पीले पास धारकों को अपने वाहन सुबह 8 बजे तक मॉडल स्कूल, क्लॉक टावर, जिमखाना क्रॉसिंग से होते हुए नेताजी स्टेडियम के मुख्य गेट के पश्चिमी ओर तथा स्विमिंग पूल के पास पार्क करने होंगे। बिना पास वाले वाहन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स स्कूल पार्किंग के पास पार्क किए जाएंगे। अबरडीन बाजार से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग से बंगाली क्लब, गोलघर, सचिवालय जंक्शन, पुलिस लाइन और नया गांव की ओर

जाना होगा। साउथ पॉइंट से अबरडीन बाजार जाने वाले वाहन साउथ पॉइंट से शादीपुर, नया गांव जंक्शन, पुलिस लाइन, आरवीवी सचिवालय जंक्शन, गोलघर मार्ग की तरफ जाएंगे। भारी वाहनों और बसों को सुबह 7 से 11 बजे तक सल्लर जेल से जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। समारोह स्थल की ओर वाई नारायण जंक्शन से आर के मिशन, फायर ब्रिगेड और वाटर स्पोर्ट्स जंक्शन से सुबह 8:30 बजे के बाद किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। जीबी पंत अस्पताल जाने वाले वाहनों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक गांधी प्रतिमा से मैरिन गेट, सिस्टी नगर, डिगनाबाद, सीशोर रोड, खान जंक्शन, अस्पताल निकास द्वार की ओर जाना होगा। आपातकालीन वाहनों को वाई नारायण जंक्शन, सेलुलर जेल होते हुए जीबी पंत अस्पताल मार्ग का उपयोग करना होगा। ये मार्ग सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक ही खुला रहेगा। परेड टुकड़ियों के वाहन जवानों को छोड़ने के बाद वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा गर्ल्स स्कूल पार्किंग में रहेंगे और परेड के समापन के बाद वाई नारायण जंक्शन होकर वापस लौटेंगे। आज और 15 अगस्त को अबरडीन जेटी से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे जाने वाली निजी पर्यटक नौकाओं का संचालन जंगली घाट जेटी से किया जाएगा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। 15 अगस्त को सुबह 7 बजे से दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण और देश के नाम संदेश और सुबह 8:50 से द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी द्वारा नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण और द्वीपवासियों के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। द्वीप समूह की यात्रा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय कोलकाता के नेटवर्क टू के महाप्रबंधक नवीन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय वरिष्ठ SBI अधिकारियों के साथ कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान कैंसर और अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों से संबंधित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पुलिस और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रतिघंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। द्वीप समूह में तटीय सुरक्षा और समुद्री परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने लोक निवास में आयोजित एक समारोह में 10 नए खरीदे गए रबराइज्ड इन्फ्लेटेबल बोट्स को पुलिस मैरिन फोर्स में औपचारिक रूप से शामिल किया। नई नावें तटीय निगरानी और गश्त, खोज एवं बचाव अभियान, अवैध शिकार विरोधी अभियान, संदिग्ध जहाजों की जांच, उथले पानी के संचालन और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाएंगी। साथ ही दूरस्थ द्वीपों जैसे नारकोंडम, तिलांगचांग और अन्य महत्वपूर्ण लुकआउट पोस्टों पर कर्मियों, उपकरणों और आवश्यक आपूर्ति के परिवहन में भी आसानी प्रदान करेंगी। कोलकाता से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। इस जहाज में 140 यात्री सवार हैं और इससे 160 से अधिक मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। अपनी वापसी यात्रा के दौरान ये जहाज 17 अगस्त सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से चेन्नई के लिए रवाना होगा। सामान का लादान 16 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य 17 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होगा। भारतीय वायुसेना की ओर से द्वीप समूह के युवाओं के लिए 31 अगस्त से 7 सितंबर तक नेताजी स्टेडियम में अग्निवीर वायु इंटेक के तहत ओपन भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी भारतीय

वायुसेना वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। मध्योत्तर अंडमान के मायाबंदर में नेताजी स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास आदर्श ब्लॉक लेवल फेडरेशन के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्णा चैतन्य मुख्य अतिथि जबकि पंचायत समिति प्रमुख शिबानी मजुमदार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला नेतृत्व वाले सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार गतिविधियों का समर्थन करने में आदर्श ब्लॉक लेवल फेडरेशन के प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में नए बीटेक छात्रों के लिए अनिवार्य इंडक्शन प्रोग्राम आरंभ 2026 का उद्घाटन किया गया। ये 3 सप्ताह का कार्यक्रम 29 अगस्त तक बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में डीब्रेड की प्राचार्या प्रोफेसर डॉक्टर सन्मुख कौर, विभागाध्यक्ष और संकाय सदस्य उपस्थित रहे। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में रिक्त पड़ी सीटों पर सीधे प्रवेश लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार कल सुबह 9:30 बजे से स्पॉट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 द्वारा संयुक्त रूप से हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए यातायात व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन का प्रसारण करेगा। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 10 नए रबराइज्ड इन्फ्लेटेबल बोट्स पुलिस मैरिन फोर्स में शामिल किए गए और कोलकाता से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल सुबह 6 बजे तक श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

देश रागनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, देशभक्ति का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना रखना। देशभक्त व्यक्ति अपने देश की उन्नति और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मिट्टी की खुशबू दिल को भाती है, भारत की धरती स्वर्ग कहलाती है। तिरंगा जब आसमान में लहराता है, हर भारतीय का सीना गर्व से भर जाता है।

श्रोताओं, भारत के वीर हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। उनके साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने देश का सम्मान करना और उसके प्रगति में योगदान देना चाहिए। भारत की धरती वीरों की निशानी है, इसकी हर गाथा बेहद सुहानी है। दिल से जो देश का सम्मान करे वही सच्चा हिंदुस्तानी है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश रागिनी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: Good morning, Andaman.

0: श्रोताओं, हर रात लंबी लगती है मगर सुबह का होना तय है। ठहरता नहीं ये वक्त कहीं, जिंदगी का बदलना तय है। कभी सुख कभी दुख है, ये सिलसिला यूं ही चलना तय है। जो आज मुश्किल लग रहा है, कल उसका सुलझना तय है। जी हाँ श्रोताओं, नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और आज के इस सफर में मैं हूँ आपके साथ सुनीता। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं पर्यावरण कार्यक्रम की ओर।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज के समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट और घटते हरित क्षेत्रों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की भी नींव है। ऐसे में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम अपने युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं? क्या बच्चों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की प्रेरणा दी जा रही है? इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू नायर को। डॉक्टर मंजू, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले जानना चाहेंगे कि युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता कैसे विकसित की जा सकती है और इसमें स्कूल, परिवार और समाज, इसकी क्या भूमिका हो सकती है?
2: जी, आपने बहुत अच्छी बात ये उठाई कि प्रकृति और संवेदनशीलता, ये जो शब्द आपने संवेदनशीलता शब्द का इस्तेमाल किया है।

0: ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इमोशनल कनेक्ट हम अपने पर्यावरण के प्रति रखते हैं, वो इस मशीनीकृत जिंदगी में मानव के साथ इंसानियत जो होनी चाहिए, मानवतावाद जो होनी चाहिए, मानव के प्रति मानव का भाव होने चाहिए, प्रकृति के प्रति मानव के जो विचार हैं, भाव हैं, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है। और इस परिवर्तन का परिणाम है कि जितना हार्म हम पहुंचा रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम विचारों के माध्यम से हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी प्रकृति के प्रति। तो इसलिए जो इमोशनल कनेक्ट है, उसकी बढ़ोतरी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये जो कृत्रिम जीवन मनुष्य अब जीने लगा है तरक्की के नाम पे, वो कृत्रिमता मनुष्य के जीवन में एक अभिशाप बनती जा रही है। प्रकृति से दूर मनुष्य होता जा रहा है। तो ये जो वास्तविकता है, उसको समझाना है, और अपने चारों ओर के जो पंच महाभूत हैं, जो कि अपने जीवन को सफल बनाती है, जिंदगी को बरकरार रखती है, पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखती है, उसके लिए कामयाब तरीके से, उसके लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के प्रति अपना एक इमोशनल कनेक्ट रखें और प्रकृति के प्रति हम काफ़ी संवेदनशील रहें।
1: जी, स्कूल, परिवार और समाज की बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शुरुआत बचपन से कैसे की जा सकती है, पेरेंट्स की क्या भूमिका हो सकती है इसमें?
0: जी, ये बात, यहाँ प्रश्न उठता है कि हमारी जो प्रकृति है, उसमें जैसे जल है, पर्यावरण है, हमें जो भोजन मिल रहा है, और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से जो भी वस्तुएं हमारे पास पहुंच रही है, उस पर तकनीकी का प्रभाव, साइंस का प्रभाव, और साथ ही साथ जो उत्पादकता से संबंध बातें हैं उसका प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है उसका प्रभाव, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता के लिए जो साइंटिफिक तरीके हमने अपनाए हैं, वो खासकर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से, उन सब का प्रभाव जो है वो बहुत अधिक बड़ा है हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आज हम बात करेंगे डिग्रेडेशन के बारे में। हम ये नहीं बात करते कि समस्याएं कैसी आई, लेकिन उन समस्याओं का परिणाम, उसके विषय में मैं कहना चाहूँगी कि डिग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि हमने अपनी उत्पादकता बहुत अधिक व्यापारिक स्तर पर किया है। हमें आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हम चीज़ों को डंप करते जा रहे हैं। हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में जानकारी कम है। हमारे पास जो वस्तुएं हमें त्याग करनी चाहिए, उसको कहाँ त्यागे, इसके बारे में जानकारी कम है। जो पहाड़ बन रहे हैं, जिसमें कि वेस्ट डिस्पोजल प्रबंधन हमें पता नहीं है, तो हम प्लास्टिक का जो उपयोग हमने किया है, उससे अपने पर्यावरण को हम विनाश के कगार पर खुद ला रहे हैं। तो उस डिग्रेडेशन के बारे में जानकारी देना, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हैबिट डेवलप करना, और वो हैबिट बचपन से ही बच्चों में, परिवार में, स्कूल में उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसे कि डस्टबिन रखना,
1: जी
0: या जो दो तरह के डिब्बे, गीला कचरा, सूखा कचरा, इसके बारे में जानकारी देना।
1: जी
0: अगर आप गंदगी फैला रहे हो, तो वो आप तक सीमित नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पे भी पड़ रहा है। इसके विषय में बोध कराना, और एक क्लीनलीनेस का स्वभाव, जो कि स्कूल में भी, घर में भी, खुद अपने जीवन में भी अपनाने की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है। और ये जिम्मेदारी या किसी फोर्स के द्वारा हम नहीं कर सकते, उसको अपने आप अपने में लागू करना है, तभी सफलता होगी। और ये बचपन से ही इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। आपका प्रश्न था कि परिवार, समाज, छोटे बच्चों पे कैसा, तो ये अगर हम बचपन से सीखा तो आदत में आ जाएगी, और जब आदत में आएगी तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता।
1: डॉक्टर मंजू, आप क्या ऐसा नहीं मानती कि अगर पेरेंट्स बागवानी में रुचि रखते हैं
0: जी
1: तो वो चीज़ बच्चों में आती है और वो बचपन से ही उनमें पेड़ पौधों के प्रति, प्रकृति के प्रति एक लगाव होता है?
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस पौधे को सींचना, उस पौधे को बड़ा करना, उस पौधे में रंग, फल, फूल जो उत्पन्न होते हैं, उसको देखना,
1: देखना जी
0: समझना, उसको उपयोग में लाना, और ये सब हर्ष, खुशी, और मैं कह सकती हूँ कि जैसे अभी आपने संवेदनशीलता की बात कही, एक भावनात्मक स्तर पर वो परिवार अपने बच्चों के साथ उससे जुड़ जाता है। वो चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे किसी भी प्रकार
1: जी
0: का, कोई बागवानी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, कोई
1: जी
0: छोटा सा पॉटेड, अब तो शहरों में लोग रहने लगे हैं, पॉटेड भी कोई प्लांट लगा रहे हो, तो उन सबका प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। और जब उसको ड्राइंग बनाने को दिया जाता है, तो वही
1: वही
0: चित्र
1: चित्र
0: बनाता
1: बनाता
0: है
1: है।
0: जो
1: जी
0: माने
1: जी
0: वो पर्पल
1: जी
0: कलर
1: जी
0: का फूल उगाया होगा।
1: जी जी तो ऐसे
0: जी
1: में उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं
0: जी
1: है, वो देख के सीखते
0: जी
1: जाता है।
0: पहला गुरु, पहला शिक्षक तो माँ, और उसके बाद उनका परिवार।
1: जी

0: फिर स्कूल में जब आते हैं तो वो फिर उनके सहयोगी मित्र और पीयर ग्रुप का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और आजकल हमारा सिलेबस इतना बढ़िया, करिकुलम और सिलेबस में बातें हैं कि बहुत सब कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मैं कुछ बातें यहाँ कहना चाहूँगी एक शिक्षिका के नाते, जिसमें मैं बहुत लंबा लिस्ट भी आपको दे सकती हूँ, जैसे क्वीज़ करवाना
1: जी
0: अपने चारों तरफ के पर्यावरण के विषय में जानकारी देने के लिए। बच्चों में ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग वाला काम बहुत अच्छे तरह रिश्ता है, वो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि
1: जी
0: वो खुद तैयारी करते हैं चारों तरफ क्या है, कुछ भी प्रश्न आपने बनाया प्रकृति
1: जी
0: पे। इसके साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन युवाओं में खासकर कि आप इस टॉपिक पे बना के लाइए, साथ ही साथ जो है कैंपस और स्टूडेंट उनका रिलेशन कैसे, अपने कैंपस को आप कैसे स्वच्छ और सुंदर और हरा भरा रख सकते हैं, या फिर इन सब के बावजूद ऐसे कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आजकल बहुत ज्यादा इन चीजों को बढ़ावा देता है कि आपके पास वेस्ट है तो उसमें से कैसे डेकोरेटिव चीज या कुछ ऐसी चीजें तैयार हो जो इसके बारे में जानकारी दे। और जैसे फ्लोरल आर्ट है, पोस्टर कॉम्पिटिशंस हैं,
1: जी
0: और फिर आजकल एग्जीबिशंस में अनकुक फूड का भी कि आप फ्यूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, कैरेट है या फिर आपके पास में सब्जियां हैं
1: जी
0: जिसको कि ना बॉईल करने की जरूरत ना पकाने की, आप उसको कंज्यूम करो। और साथ ही साथ अब माइक्रोबायोम की बातें बहुत आ गई है, जैसे दही जमाने की बात है जो आपके आंत के लिए भी अच्छी है, पेट के लिए भी अच्छी है, तो उन चीजों के विषय में जानकारी दे। जैसे कि हमने मिलेट्स के लिए बहुत कहा कि ये श्री धान्य है, तो वैसे ही अब माइक्रोब्स के बारे में बच्चों को ऐसे फूड कौन से जो प्रोबायोटिक है उनकी बेनिफिट्स के बारे में जानकारी लोग ले रहे हैं। और वेजिटेबल कार्विंग करना या सोशल फॉरेस्ट्री करना बहुत प्रचलित हो गया है। और साथ ही साथ गार्डनिंग, गार्डनिंग का आपने पहले भी मेंशन किया था, अब हम गांव को चुन रहे हैं, स्कूलों में सिलेबस में निर्धारित किया गया कि आप गांव चुने, तो वो टीचर्स के साथ जाते हैं गांव, गांव वालों के साथ मिलके वहां गार्डनिंग करना, फार्मिंग में जाना, गांव की
1: जी
0: समस्याओं के बारे में जाना, सफाई के लिए वहां जाना, बीच को क्लीन करना, मतलब बड़ी सारी जिम्मेदारियां इन सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो बच्चे ग्रुप में जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीख के आते हैं।
1: जी
0: कभी कभी तो उस गांव के बारे में पूरी जानकारी वो सजेशंस भी देते हैं। बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं जिन सब का प्रभाव बच्चों पर, युवाओं पर और गांव वालों पर और पूरे समाज पर पड़ रहा है।
1: चूंकि आप एक शिक्षिका हैं, आप युवाओं को पढ़ाती हैं, तो बच्चों में, युवाओं में कितना इंटरेस्ट है प्रकृति को लेकर?
0: जी, जब तक आप सिलेबस देते हो, करिकुलम बताते हो और कंजर्वेशंस के टिप्स और पॉइंट्स लिखवाते हो, पढ़वाते हो, याद करवाते हो, एग्जाम तक ले जाते हो,
1: जी
0: उसमें तो सफलता मिल ही जाती है, वो भले ही थोड़ी नीरस है। लेकिन जैसे ही आप लैब टू लैंड बाहर
1: जी
0: निकलते हो तब आप उनका जोश देखिए, क्योंकि मनुष्य चाहता ही है कि वो प्रकृति में रहे, कहीं कृत्रिमता उनको चाहिए नहीं कि वो
1: जी
0: एसी कमरे में बैठे हैं या फैन के नीचे बैठे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनमें अलग ही रौनक आती है, और जो खुद लर्न किया हुआ एक्सपीरियंस अनुभव है वो
1: जी
0: जिंदगी भर भूलते भी नहीं है, उनको अपनाते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और पास जाकर अगर एक कीड़ा है तो वो क्या कर रहा है, क्या वो परागण में साथ देता है, एक तितली उड़ी तो कैसे उड़ी, उसके रंग का क्या महत्व है, तितली क्यों है एनवायरमेंट में, एक स्पैरो है तो ये सिद्ध करता है कि स्पैरो वहां इसलिए है क्योंकि वहां एनवायरमेंट शुद्ध है, अगर वो शुद्ध नहीं है तो चिड़िया भी वहां नहीं रहेगी। तो ऐसी हर चीजों के विषय में जानकारी पास जाकर, छू कर, समझ कर, अपने आप खुद एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर लर्न करना, ग्रुप में लर्न करना,
1: जी
0: खुशी खुशी लर्न करना, जो चीजें भूलती नहीं है। और ये प्रयास बहुत सफल हो रहा है कि बच्चे जो है स्कूल कंपाउंड से बाहर आ रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं, खुद
1: जी
0: काम कर रहे हैं। मैं तो एग्जाम्पल देना चाहूंगी, केरल मलाबार तट का एक स्कूल है,
1: जी
0: गवर्नमेंट स्कूल है, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे के पूरा स्कूल खेती बाड़ी में भी लगा है, उनको स्कूल आवर के बाद मौका दिया गया, वो उगा रहे हैं चावल के साथ सब्जियां, और ये उगता है सीजन में, तब कटता है जबकि त्योहार फसल कटाई का ही त्योहार
1: पर
0: ओणम है,
1: जी
0: और
1: जी
0: पूरे गाँव वालों को स्कूल जो है वो वेजिटेरियन डाइट के लाना होता है पत्ते में, और ये पूरे स्कूल से ही बच्चे ही करते हैं, बड़ी खुशी खुशी वो इंतजार करते हैं कि कब ये आएगा, और हर क्लास का नियम जैसे टाइम टेबल होता है वैसे खुद वो ऑफर करते हैं, अपने घर से वो चारा लाना, बनाना, सब कुछ करना, और उसके बाद वो उसके फ्रूट को खुद पकाना, खिलाना, ये सारी चीजें उनकी जिम्मेदारी। तो पूरा स्कूल राउंड द ईयर उनके बाकी टाइम टेबल में ये भी लगा, और बड़ी सफलता से बच्चे लर्न कर रहे हैं कि कैसे खेती की समस्याएं क्या है, कौन सा कीट पतंग आ रहा है। अब मैं
1: जी
0: कहूंगा तो बहुत सारी बातें हैं, और जब स्वयं, क्योंकि बहुत बार माता पिता सोचते हैं अरे बच्चों से कुछ नहीं करवाना, खेलना भी नहीं, उनको छोड़ना बस पढ़ते रहना, ऐसा नहीं है, अगर इसमें समय देंगे तो उससे जो लर्निंग आती है वो तो जीवन पर्यंत रहने वाली है।
1: डॉक्टर मंजू, ये डिजिटल युग में आज युवा बच्चे मोबाइल और इंटरनेट में अधिक व्यस्त रहते हैं,
0: जी
1: ऐसे में उन्हें प्रकृति

0: जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं?
1: जी, एक तो अब मैनेजमेंट की बात भी बहुत आगे आ गई है, और आपने कहा कि बच्चे जो मोबाइल का स्क्रीन देखना, लैपटॉप का स्क्रीन देखना, टीवी का स्क्रीन देखना,
0: जी
1: कमरे में बंद रहना,
0: जी
1: और पास आपके पेरेंट्स बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, तो भी सब अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जम, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसमें से आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी टाइम टेबल बनाएं, अपने लिए समय निकालिए कि आप पर्यावरण से कब जुड़ते हो, कितना स्क्रीनिंग का टाइम आप अपने लाइफ में इन चीज़ों के लिए दे रहे हो, और कितना टाइम आप नेचर के साथ जुड़ने के लिए दे रहे हो। आप उन बातों को भी सीख सकते हैं, स्क्रीन भले ही देख रहे हो, कि मैनेजमेंट के तरीके क्या है, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ क्या है, जो पर्यावरणीय संसाधन हमारे चारों तरफ है, जिन पर थ्रेट है। अगर आप यही देखते रहेंगे तो वो थ्रेट आपके कमरे में आके आपको ही प्रभावित करेगा। तो बेटर है उन प्रभावों से बचने के लिए, जैसे कोजियर नामक व्यक्ति ने 1971 में कहा कि इन्वेंट्री बनाइए, तो उन इन्वेंट्रियों के बारे में जानकारी दीजिए, लीजिए। और साथ ही साथ जो पर्यावरण दिवस है, या 5 जून हमारा एनवायरमेंट डे है, अर्थ डे अभी हम मनाने वाले हैं 22 अप्रैल में,
0: जी
1: तो ये सब दिवस जो आते हैं उनकी महत्ता को जाने और उसके लिए कुछ प्रयास करें, आपके ग्रुप द्वारा, आपके फ्रेंड्स द्वारा।
0: अंत में हमारे जो युवा इस समय आपको रेडियो के माध्यम सुन रहे हैं,
1: जी,
0: उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जानकारी तो सब जगह से मिल जा रही है, लेकिन उसके अनुकूल समाधान क्या है, इसके बारे में भी जानकारी लें और सचेत रहें अपने पर्यावरण के बारे में। जो ज़रूरत है उसके लिए कदम मिलाएं और आगे बढ़े। आज भी ज़रूरत है कि आप मिलजुल कर रहें और इन समस्याओं को जूझते हुए आगे निकलें और एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं, तभी
0: बिल्कुल।
1: हमारे समाज का उत्थान होगा।
0: तो डॉक्टर मंजू, हम समझते हैं जिन युवाओं ने इस समय आपको सुना है वो ज़रूर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनेंगे और इसके संरक्षण में अपना योगदान अवश्य देंगे। आज आप कार्यक्रम में आई, समय दिया आपने, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: युवाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अभी आप इस विषय पर डॉक्टर मंजू नायर से ली गई ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद भी।
3: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
4: आ गई सैलरी?
5: हाँ।
4: नहीं झुमके ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या,
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: एक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने

का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, मनहर उदास, हेमलता और साथियों की आवाजों में फिल्म राजपूत का ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं, वधुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

शिव हरि के संगीत निर्देशन में तैयार लीजिए अब सुनिए फिल्म चांदनी का ये गीत, लता मंगेशकर और बबला की आवाजों में बोल आनंद बख्शी के हैं।

0: श्रोताओं, वक्त बदलता जरूर है, बस तुम हिम्मत बनाए रखना। हर रात के बाद सवेरा है, बस ये भरोसा बनाए रखना। अंधेरों में भी राह मिलेगी, उम्मीद का दिया जलाए रखना। मंजिल खुद पास आ जाएगी, बस खुद पर यकीन बनाए रखना। जी हाँ श्रोताओं, इसी विचार के साथ मैं सुनीता आप सबों से विदा लेती हूँ। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सुप्रभात।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: अभी आप गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव

0: करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्र पत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
3: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजीमाला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
5: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है।

0: रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुनें। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर एक से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल OBC सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD प्रेडिक्ट्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha

अभी आप अशोक खोसला की आवाज़ में चंद गज़लों का लुत्फ उठा रहे थे। श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में चंद नगमे।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

अभी आप सोनू निगम की आवाज़ में चंद नगमों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं लीडर इस फिल्म के गीत से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। गीतकार शकील बदायूनी तथा संगीतकार नौशाद अली के हैं।

आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में यादों की बारात, इस फिल्म का ये गीत। बोल मजरू के हैं, वधुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार, लीजिए अब सुनिए बातों बातों में। इस फिल्म का ये गीत आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में बोल योगेश के हैं।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते, और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस फिल्मी गीतों के कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं दूरियां, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है भूपेंद्र और अनुराधा पौडवाल ने।

0: और अब आइए सुनते हैं रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ों में फिल्म घरौंदा का ये गीत। इस गीत को लिखा है गुलजार ने व धुन बनाई है जयदेव ने।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

अभी आप रूना लैला और भूपेंद्र की आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था घरौंदा। इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आप आज एमएल वसंता कुमारी का कर्नाटक शैली में गायन सुनेंगे। इनके साथ वायलिन पर एक कन्याकुमारी, मृदंगम पर श्री मुशनम वी राजा राव और घटम पर TH सुभाष चंद्र और इनका सहयोग दिया है सुधा रघुनाथन ने। तो आइए सुनते हैं राग जयंता श्री, जो कि आदिताल में निबद्ध है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू। स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
7: Offer valid for existing Maruti Suzuki customers. TNC apply.
0: श्रोताओं, आइए अब सुनिए राग पंतुवराली जो कि आदिताल में निबद्ध है।

श्रोताओं, अभी आप M.L. वसंता कुमारी का कर्नाटक शैली में गायन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला एसएमएस हमें आया है स्कूल लाइन श्री विजयपुरम से मोनिका, रविंद्र और मोहन देसाई का। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बेमिसाल का ये गीत, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

लोफर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। इस गीत के लिए हमें एसएमएस भेजा है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र जय नारायण तरुण और प्रतीक चौहान ने।

श्रोताओं, रंगत से हमें SMS आया है ज्योति अंजलि प्रतिमा राहुल दिवाकर का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मिकी वायरस का एक गीत। सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा प्रेम संगीता लिपि और दीपाली गोप ने हमें एसएमएस भेजा है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म 20 साल बाद का ये गीत, तो सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला एसएमएस हमें आया है अरविंद, बेन जॉन और आशीष का, साउथ पॉइंट श्री विजयपुरम से। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म प्रिंस का ये गीत, तो देरी ना करते हुए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

गीत। इस गीत के लिए हमें एसएमएस आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का।

मेम यो वंडुर श्री विजयपुरम से एसएमएस आया है कोनिका दिपंती जयंतो और भारतिका। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म मेजर सांप का ये गीत, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

जिला नांदेड़ योताला महाराष्ट्र से हमें एसएमएस आया है। शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अरुणव, राखी, दुर्गेश्वरी और तृप्ति यशवाल का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला एसएमएस हमें भेजा है हैवलॉक से विष्णु, शिवा, अर्जुन और विक्रम ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म रईस का ये गीत, तो देरी ना करते हुए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

इश्क। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत। इस गीत के लिए हमें SMS आया है वृक्षाबाद श्री विजयपुरम से कीर्ति, कमली और सोनिया का।

0: तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: आई लव यू।
2: यह

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1349वीं कड़ी।

0: का उमंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
1: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
1: जी
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और तनुजा बाई देवांगन।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
0: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
1: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
0: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
1: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
0: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
1: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
0: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
1: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
0: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
1: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
0: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
0: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
1: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतः

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सब

0: स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
1: जी,
0: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
5: कौन है?
6: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
5: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
6: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
5: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
6: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
5: ये इस शीशी में क्या है?
6: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
5: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
6: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
5: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
6: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
2: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे।

0: ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
3: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की ठान ली।

0: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
1: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
0: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम।
2: हाँ बाबा बताओ, हमें क्या करना होगा?
0: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
3: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
0: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
1: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
2: सहेंगे। हाँ,
4: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
5: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
6: यस सर,
5: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
6: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
5: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
6: थैंक यू सर,
5: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
6: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
5: सिपाही।
6: यस सर।
5: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
6: यस सर।
2: भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो, भागो

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
2: दुश्मन। हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो,
3: हमला करो,
2: चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ, सिपाही आते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन,
3: दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो, अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो,
3: हमला करो,
2: चलो चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ, सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
4: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
5: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
4: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
4: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे।
4: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा। कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई।
6: अरे,
0: वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था? इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूरवीर था। शूरवीर
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा।
6: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत ना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: अच्छा। अभी आपने सुना कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1389वीं कड़ी सुन रहे थे।

आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र गीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं सुजाता फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है गीता दत्त और आशा भोसले। धुन तैयार किया है SD बर्मन और गीत को लिखा है मजरूह ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: डू यू प्ले फॉर द रश और डू यू प्ले इट स्मूथ? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: मुकेश की आवाज में आइए अब सुनते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

0: story worth telling.
1: कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए दूल्हा दुल्हन फिल्म का ये गीत। गीत रचना इंदिवर की तथा स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी का लिखा एवं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम हमराही।

ब्लैकमेल। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की तथा संगीत में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशिक फिल्म से। फिल्म के इस गीत को लिखा है शैलेंद्र तथा धुन दिया है शंकर जयकिशन ने। आवाजें हैं मुकेश और साथियों की।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए तेलुगु कार्यक्रम।
1: मीडियम व्यू।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവിൽ 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, एक बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: दिखाई देता है इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसे कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। बो

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला पैगाम हमें आया है फ्रारगंज श्री विजयपुरम से अंजना, प्रेरणा और शीतल का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फ्लाइंग जेट फिल्म का ये गीत, तो आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला पैगाम हमें आया है मोहिनी राधिका का सादीपुर श्री विजयपुरम से। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म शिवाय का ये गीत, तो देरी ना करते हुए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हंगामा। श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। इस गीत के लिए हमें पैगाम आया है स्कूल लाइन रांची बस्ती श्री विजयपुरम से रौनित, मोहित और अशोक का।

दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा हसन बाबू मिफ्रा बेबी का ये सुनना चाहते हैं फिल्म अंदाज का ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पारित, इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुईं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
4: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार

0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन

0: चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों में गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। वही मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में

35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी में हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की गई है तथा मछुआरों को सलाह दी जाती है कि 12 से 15 अगस्त के बीच अंडमान एवं निकोबार तटों के समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:33 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 MHz FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 MHz पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्मी संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: चल सब घर में आ रही के साथ बगीचे में गाना गाएंगे।
1: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
0: बेबी कम ऑन, शंकर बिहारी के साथ।
2: अबे ओ बुड़बक, वो भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है।
3: आई लव सपना। आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना।
2: आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, सपना, सपना।

श्रोताओं, अभी आप पाप, रुश, लज्जा, हीरोइन, लेडीज वर्सेस रिकी बहेल, पड़ोसन, राजा भैया, हीरो नंबर वन, दिलवाले और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का के फिल्मों का गीत सुन रहे थे। हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से, और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यू ही गाते रहो।

दोस्तों, वादे करना आसान है पर उन्हें निभाना कठिन इम्तिहान है। कुछ लोग वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन कुछ दिल उन्हें उम्र भर याद रखते हैं। टूटे हुए वादों की पहचान नहीं होती, लेकिन उनका दर्द उम्र भर सुनाई देता है। भरोसा जब बिखरता है तो केवल रिश्ता नहीं, पूरा दिल टूट जाता है। हर रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है, और हर विश्वास की सबसे बड़ी पहचान वफादारी। जो अपने वादों का सम्मान करते हैं, वे लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं।

दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जो मुस्कुराते चेहरे को भी खामोश कर देता है। यह दिल को धड़कना सिखाता है और कभी उसी दिल को तड़पना भी सिखा देता है। जब किसी की मुस्कान अपनी खुशी बन जाए, जब किसी की आवाज़ सुकून बन जाए, जब उसकी एक झलक के लिए दिल बेचैन रहने लगे, तब समझ लेना कि इश्क ने दस्तक दे दी है। इश्क में इंसान अपना दिल नहीं हारता, अपनी पूरी दुनिया और सबके नाम कर देता है। अपनी नींदें, अपने सपने, अपनी हंसी, सब कुछ उसी की खुशियों पर कुर्बान कर देता है।

दोस्ती वह रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाता है। जहाँ अपनेपन की खुशी हो वहीं सच्चा यार मिल जाता है। जब जब जिंदगी ने इम्तिहान लिया तू मेरे साथ दीवार बनकर खड़ा रहा। जब सब ने हाथ छोड़ दिया तूने दोस्ती का हाथ और मजबूती से थाम लिया। ना दौलत से ना शोहरत से दोस्ती की पहचान होती है। एक सच्चा दोस्त ही जिंदगी की सबसे बड़ी मुस्कान होती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। आज की हमारी दूसरी सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। सभा के आरंभ में पेश है निकोबारी कार्यक्रम।
1: Sinla menji rokare hamang ingri taka ingam medium wave 438.6 meter hekingam 684 kilohertz likti hang in ramangelngi agashwani isri vijaypuram angi nikubari program tahang

मिनका तरुण ही इंगी हराब ngam deputy education office south andaman nahalen lakine kan ngam road race tamenyi ki konya nyi ki kan aelmane schools e sri vijayapuram under ngam jurisdiction ngam deputy education office is south andaman ngam even na open me boys and girls na ke kae nipta sat sin min ala hango august singe tanet kan nera na ta full ita ta full kan yo tala pheun el ngam netaji stadium isri vijayapuram lamak te ngam sports section deputy education office south andaman and ngi tarha yen min ka talun hi हों दांगी तरह एक तरन में चोंग ही महावत करे नलखोय ने कुन पनाम ही असुनियन टेन हुरेज गम चोंग नालंदा नंचु लिटिल अंडमान इतमा चो तरकन रो हुरेज तहादम नलक ने हेडोवा आचावन मिन इप्तानी सीन अलहांगो चिंगेत इद हेवर के रो तला पुने रंग लिटिल अंडमान नहावन नेचु श्री विजयपुरम हेक अनमिनगम चोंग नालंदा नंग आसुन गेंदे नंग चो लिटिल अंडमान इप्ता ताफुल सीन मिन आलाहांगो चिंगेट इत हेवर किंजरो तला पुहिन लिक्न्या

0: Dikat nya, Amos, Eliza, andai ngam mana ahang hitan ke ka, asa ngam terhayen perita ke itu ditak hi, telak tan sin ngai ehang ngatil ngah ang tangamu, hek in hurej, hang rong ita kasata, ita kauk sin rong di telapu. Salam yan ngai.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। संचार कौशल को एक प्रभावी प्रक्रिया भी माना जा सकता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह व्यक्ति की विचारधारा, व्यक्ति और गुणों को दिखाने का कार्य करता है। एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ है सूचनाओं और विचारों का आसपास में आदान प्रदान। वॉरन एंड वेबर के अनुसार यह एक ऐसी क्रिया का तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है। आइए संचार कौशल के सभी प्रकार के बारे में और अधिक जानते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। मौखिक संचार तब होता है जब हम बोलकर दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। संचार का यह तरीका सीधे आमने सामने या परोक्ष रूप से किया जा सकता है, जैसे फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस, रेडियो या टेलीविजन इत्यादि पर। मौखिक संचार का उदाहरण। मौखिक संचार को आगे दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक। जब हम कार्यालय, ऑफिस या मीटिंग में बातचीत करते हैं, दैट इज फॉर्मल। जब हम किसी मित्र के साथ या पार्क में या घर के सदस्यों से बात करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। गैर मौखिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, उंगली से इशारा करना, नजरों का संपर्क, हाथों की गति, सिर हिलाना और स्पर्श आदि शामिल है। गैर मौखिक संचार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सूचना प्राप्त करने वालों के ध्यान स्तर के बारे में अधिक सटीक विवरण देता है, जैसे कि बातचीत के दौरान श्रोता कितना गंभीर है भी या नहीं इत्यादि। गैर मौखिक संचार, उदाहरण के लिए देश में अचानक महंगाई बढ़ जाने के कारण आप कंपनी के बॉस से अपनी वेतन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। आपकी जरूरतों को सुनने के बाद आपका बॉस बात करते समय अपनी मौखिक सहमति दिखा सकता है, भले ही उसे आपकी वेतन वृद्धि में कोई दिलचस्पी न हो। इस मामले में वो आपको गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अलग अलग संकेत देगा, जैसे आंख न मिलाकर बात करना, आहें भरना, चेहरा खुजाना आदि। यदि वह इन संकेतों को दिखाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बॉस इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है और हो सकता है

कि आपको अपने वेतन में वृद्धि न मिले। लिखित संचार यानी रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली संचार के तरीके में से एक है। सभी आधिकारिक संचार जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना का प्रवाह, एक संगठन से दूसरे में और दूतावास से दूसरे में सूचना का प्रसारण लिखित प्रारूप में किया जाता है। भले ही कोई निर्णय या एक्शन मौखिक संचार के परिणाम हो, इसे मौखिक संचार को हमेशा कार्यान्वयन यानी अमल में लाने से पहले लिखित संचार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। लिखित संचार में संचार देने के विभिन्न तरीके होते हैं, उदाहरण के लिए ईमेल, नोटिस, पत्र, रिपोर्ट, मेमो, वेबसाइट, लेख, चैटिंग, ये सब लिखित समाचार में आते हैं। दोस्तों, खराब तरीके से लिखा गया पत्र अक्सर भ्रम पैदा करता है और शर्मिंदगी का कारण बनता है। लिखित संचार के दौरान याद रखने वाले दो महत्वपूर्ण बातें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, अच्छा लिखे, प्रीमियम शब्द डाले, व्याकरण संबंधी गलतियों से बचे, व्याकरण संबंधी गलतियों से बचे, वाक्य का लेआउट ठीक से बनाए, क्योंकि इन सभी में आपकी छवि को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उच्च क्षमता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करें, सुनिश्चित करें कि संदेश का मुख्य भाग या सामग्री संचार के उद्देश्य के प्राप्त करने में सक्षम और विषय वस्तु के प्रासंगिक है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन संचार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, क्योंकि आजकल का दौर जो हम करते हैं ना कि लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ट्रेंड्स जो भी है, और आज का आधुनिक जीवन में कम्युनिकेशन बहुत अहम हिस्सा निभाता है। इसीलिए चाहे वो स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, या कोई एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर मैनुअल वर्कर्स ही क्यों ना हो, इन सभी के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता है उसे अच्छी वेतना मिलती है और उसे अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छा जॉब भी मिल जाता है। और चाहे कितना भी स्किल्ड ही क्यों ना हो, चाहे कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, बुरे कम्युनिकेशन से अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी खो जाते हैं। इसीलिए आप अपने बच्चों को अगर स्कूल में हो तो उनका कम्युनिकेशन ठीक करें। आप जो भी लैंग्वेजेस अपने बच्चों को सिखाते हो, या फर्स्ट लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज, जैसे ही साल ख़त्म हो जाता है, जैसे ही एकेडमिक्स ख़त्म हो जाते हैं, चाहे मान लीजिए आपने बोर्ड्स के बाद सब्जेक्ट भूल जाते हैं, पर कम्युनिकेशन हमेशा ही हमेशा उनको बहुत ही यूज़फुल होगा आगे बढ़कर। और इस कम्युनिकेशन को अच्छा सीखना चाहिए। अगर बचपन से ही उन्हें एक अच्छे कॉन्वेंट में, या फिर जहां माहौल अच्छा है, जहां उनकी भाषा अच्छी की जाए, जहां लोग अच्छे से बात करते हैं, और उतना ही नहीं, जो भी हम घर पे बात करते हैं वो बच्चे जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, सुनते हैं और उसका ही फिर मिमिक करते हैं। इसीलिए घर पर जो भी कम्युनिकेशन हो उसे ठीक करिए। दोस्तों, आजकल इतने साधन उपलब्ध है हमें, यानी वेबसाइट है हमारे लिए, फ़ोन पर भी आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और उसे आप सुधारना चाहते हैं, तो पहले आप छोटे छोटे कदम डालिए, कुछ अच्छा सीखिए और उसे अपने घर पर अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटें, शेयर करें और बात करें, ताकि आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी लाभ मिले। इसके साथ वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। एक ग्रुप एक्टिविटी के तरह सब लोग मिलकर आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास ध्यान यंगस्टर्स पे लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो कस वर्ड्स है, जो बुरा लैंग्वेज कहा जाता है, उसे जल्दी से लोग सीख लेते हैं और अचानक मुंह से निकल आ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके उतना, जितना हो सका उतना आप अपना कम्युनिकेशन को सही रखें। जो भी बुरी बात है, जो भी बैड लैंग्वेज है, उसे बिल्कुल भी अमल न करें। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोलते हैं कि हमें किधर कौन सी जगह पर कैसा बातचीत करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज़ अ मिथ एंड अ मिसकंसेप्शन। जो भी दिमाग में जाता है वो वहाँ रहता है, और उसे यूज़ करते करते हम उसे एक्टिवेट करते हैं। दोस्तों के साथ रहकर हम ऐसे ऐसे बातें इतना आसानी से बोल देते हैं, और कई अच्छे लोगों के संगति में ऐसे

0: बुरे बात हमारे मुंह से निकलने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए सही शब्दों का प्रयोग करें। अच्छे शब्दों को आप रिपीट करते रहिए, ध्यान रखते रहिए, ग्रामर को खास ध्यान दीजिए दोस्तों, एंड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, एंड दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर लाइफ। विद दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 9वां कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम, अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। 5 तमिल में कृषि कार्यक्रम आप सुनेंगे। 5:30 पर बंगला में कार्यक्रम होगा चिरंतोनी। किसान वाणी कार्यक्रम के तहत 6 महिला उद्यमी और SHG से लाभान्वित महिला श्रीमती सपना से बातचीत होगी। 6:30 पर कार्यक्रम होगा महफिल कवाली। मौसम की जानकारी, जलयानों की यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाओं से हम आपको अवगत करवाएंगे 7:15 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। युवावाणी के तहत 7:30 पर पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार, जिसमें सदाबहार मस्त मौजी अभिनेता शमी कपूर और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो पर वार्ता आप सुनेंगे। 8:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान आप सुनेंगे रात 8:30 पर। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8 संसद समीक्षा, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10 FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारण होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी सवेरे 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार तत्पश्चात आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स में 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा कंपोस्ट खाद। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा वतन शीर्षक पर। 6:30 पर रामचरित मानस गान, गांधी चर्चा आप सुनेंगे 6:40 पर। 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। 7:30 पर FM 100.9 MHz और प्राइमरी चैनल पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर कलाकार होंगे KL सहगल और रेशमा। 9 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहानी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का सारंगी वादन प्रसारित किया जाएगा। 10 कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा दिन के 11:00। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे लोक गीत। दोपहर

12 बजे तेलुगु में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम आप सुनेंगे। 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम के तहत कवाल होंगे आबिदा परवीन। आपके नाम फिल्मी पैगाम, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी तत्पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स। 3:30 पर कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। कल हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें एक ही श्रोता के पसंद के गाने सुनवाए जाएंगे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम होगा। 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के तहत डॉक्टर एस स्वामी से बातचीत होगी। विषय रहेगा मसालों का प्रसंस्करण व संवर्धन। 6:30 और 6:40 पर आप सुनेंगे बैंड म्यूजिक, जबकि 6:45 पर मौसम की जानकारी, जलयानों की यात्रा कार्यक्रम और कार्यक्रमों के विवरण के बारे में बताया जाएगा। 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचार तरंगिणी का समय रहेगा रात 8 बजे। 8:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार तत्पश्चात गौरव गान आप सुनेंगे 8:30 पर। रात 10 बजे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा संध्या 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हीरो फिल्म के इस गीत के साथ, लता मंगेशकर और मनहर के युगल स्वरों में, बोल आनंद बख्शी के, और धुन तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, ये था तमिल कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार। और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बीज चाहे नीम का हो या फिर आम का, फल उसी के अनुसार मिलता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य बनाते हैं। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्मों का रास्ता अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इन्हीं विचारों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और भाइयों, आज आपको बताना है, सिका टोका बीमारी किस पौधे की बीमारी है, काजू, केला या फिर आम? भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान साथियों, आज आपको बताना है कि सिका टोका बीमारी किस पौधे की बीमारी है। 3 विकल्प, काजू, केला या फिर आम। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में।

राष्ट्रीय बांस मिशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य बांस की खेती को बढ़ावा, ग्रामीण रोजगार बढ़ाना और बांस उद्योगों को मजबूत बनाना है। ये योजना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, खेती के लिए अच्छी नस्ल के बांस के पौध उपलब्ध कराना, बांस से जुड़ी इंडस्ट्री जैसे फर्नीचर, अगरबत्ती, बास्केट बोर्ड आदि को विकसित करना, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, बांस की प्रोसेसिंग यूनिट लगवाना, बांस के उत्पादों की मार्केटिंग में सहायता प्रदान करना। इस योजना से किसानों को मिलने वाले लाभ हैं: बांस के पौधों पर सब्सिडी, सरकार बांस के पौधों को लगाने पर 40-60% तक की सब्सिडी देती है, पौधशाला या नर्सरी में सहायक। अगर कोई किसान या समूह बांस की नर्सरी खोलना चाहता है तो सरकार आर्थिक मदद देती है, खेती की लागत में भी सरकार मदद देती है, जैसे गड्ढा खुदवाना, खाद डालना, पौधरोपण, सिंचाई सिस्टम इत्यादि, इन सब पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। जैसे सरकार फसल को खेतों से लेकर बाजार तक पहुँचाने

में पूरा समर्थन देती है, जैसे कटिंग, सुखाना, बीडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, बिक्री इत्यादि, प्रशिक्षण और तकनीक शिक्षा। किसानों को इसके तहत सिखाया जाता है कि कौन सी बांस की किस्में कटाई में अच्छी होती हैं और बांस को कैसे उगाएं, इसे कैसे प्रोसेस करें और इससे कैसे अधिक लाभ कमाएं। सरकार द्वारा बांस प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत अगर कोई किसान या समूह बांस का सामान बनाने की मशीन लगाना चाहता है, जैसे अगरबत्ती, बांस फर्नीचर, बांस प्लाईवुड, बांस टोकरी इत्यादि, तो सरकार 35 से 50% तक की सहायता देती है। और साथियों, इस योजना का लाभ सभी छोटे बड़े किसानों, किसान समूहों, कृषि उत्पादक संगठन, महिला समूह, आदिवासी किसान एवं सरकारी समितियां उठा सकती हैं। साथियों, इसके तहत सरकार द्वारा बांस लगाने का तरीका सुझाया गया है। इसमें प्रति एकड़ पौध संख्या 800 से 1200 पौधे तक होती है। दूरी लगभग 5x5 मीटर या 6x6 मीटर तक होनी चाहिए। और साथियों, इसके रोपण का सर्वश्रेष्ठ समय मानसून के समय होता है। पहली कटाई 3 से 4 साल के बाद। आंकड़े बताते हैं कि इससे किसानों को एक एकड़ में सालाना 1 लाख से 2.5 लाख तक की आय मिल सकती है और ये निर्भर करता है बांस की फसल और उसकी किस्म पे। इस पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रकार से है। पौधे खरीदने पर सरकार 40 से 60% तक सब्सिडी देती है, जबकि नर्सरी खोलने पर 1 से 5 लाख तक, ड्रिप सिंचाई के लिए 55 से 70% तक और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 35 से 50% तक, बांस आधारित उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 50 से 65% तक की सब्सिडी दी जाती है। साथियों, इसके लिए आवेदन का तरीका है कि अपने क्षेत्र के राज्य कृषि विभाग से फॉर्म ले सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK में भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। साथ ही इसका ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, जमीन का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, किसान पंजीकरण नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। और इस योजना में सबसे अधिक लाभ मिलते हैं छोटे किसानों को और जहां बरसात अधिक होती है, आदिवासी क्षेत्रों में जहां बंजर जमीन है और जहां लकड़ी उद्योग होते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन यानी NBM के तहत सरकार की इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि सभी छोटे बड़े किसानों, आदिवासी क्षेत्रों में और जहां बांस उद्योग की संभावनाएं अधिक हैं, वहां इस उद्योग से अधिक लाभ मिल सके।

भाइयों, ये तो थी कुछ बातें राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में। और साथियों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डिगनाबाद की रहने वाली एसएचजी ग्रुप के साथ जुड़कर लाभ उठा रही महिला श्रीमती सपना जी के साथ।

0: तो सपना जी, पहले हमारे किसान साथियों को अपने बारे में बताइए।
1: नमस्कार, मेरा नाम सपना है। मैं एंजल एसएजी ग्रुप की तरफ से हूँ। हमारा 13 लोगों का एक समूह है। मैं हाउसवाइफ थी पर अभी पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, एसएजी ग्रुप के तरफ से मिला है।
0: एक समय था होगा आपको एसएजी के बारे में नहीं पता था,
1: जी,
0: तो फिर आपको कैसे पता चला कि एसएजी है और इसमें ग्रुप बनाते हैं?
1: मेरी हेड एक नागमणी मैडम थी, वो उसी ने हमें एनजीओ ज्वाइन कराया है
0: जी
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से।
0: जी एसएजी ज्वाइन करके
1: जी
0: फिर आपने ट्रेनिंग की होगी, तो क्या
1: जी
0: क्या ट्रेनिंग आपने
1: मैंने
0: किया?
1: सीपी का ट्रेनिंग किया है, शेल आइटम का,
0: जी
1: इयररिंग्स बनाना सिखाए
0: जी
1: और कीचेन वगैरह है, हेयर क्लिप्स वगैरह
0: जी तो कैसा
1: एक्सेट्रा।
0: था आपका अनुभव?
1: बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत अच्छा लगा।
1: जी
0: फिर आप इसको आगे बढ़ाने का सोच रही हैं, व्यवसाय में इसे आगे बढ़ाएंगी?
1: जी मैं सोच रही हूँ, मैं आगे बढ़ाऊंगी।
0: जी तो आप बताइए कि एसएचजी से जुड़कर आप और क्या क्या कर रही हैं?
1: मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ
0: जी
1: एसएचजी ग्रुप की तरफ से,
0: जी
1: और अभी मैं एक स्टॉल लगाने का सोच रही हूँ,
0: जी
1: प्रोसेस चल रहा है
0: जी तो
1: जैसे ही।
0: स्टॉल में आप

0: क्या रखेंगी?
1: मैं दही वड़ा, समोसा चाट एक्सेट्रा आइटम रखूंगी
0: रखने की सोच रही है।
1: जी।
0: तो आप अपने जो SHG ग्रुप हैं, आपने कहा 13 मेंबर्स हैं, तो आप सब मिलकर कितने अमाउंट को इकट्ठा करते हैं?
1: मैं एक एक मेंबर से 500 मिलता है, तो 13 मेंबर्स है तो 6,500 जमा होता है टोटल
0: जी, अभी तक एक बार भी
1: जी।
0: लोन लिया है?
1: जी हाँ मैं ली हूँ।
0: जी, तो आपको क्या लगता है कि SHG से लोन लेना आसान है? बैंक वगैरह जाना कैसे आपको
1: नहीं,
0: लगता है
1: SHG
0: कि?
1: ग्रुप की तरफ से लोन लेने से अच्छा है, इजी पड़ रहा है।
0: जी,
1: पहले एक मीटिंग में सारा डिस्कस करते हैं कि किसको लोन चाहिए। जो एक मेंबर बोलते हैं मुझे चाहिए, तो मैं उन लोगों को चेक के थ्रू काट के दे देती है और उन लोग जाके बैंक में जमा करते हैं, फिर विड्रॉ करा लेते हैं उन लोग।
0: जी,
1: फिर
0: तो
1: इंटरेस्ट है 2% है, जिस 1 रुपया भी है कहीं
0: जी, तो हमें ये बताइए कि आप प्राय आप कब कब मीटिंग करते हैं?
1: कहीं। मैं हर 10 तारीख को मीटिंग रहता है हम लोग का,
0: हर महीने की 10 तारीख को आप
1: जी
0: मीटिंग करते हैं, तो क्या सब सारी महिलाएं अपना समय निकाल कर आ पाती
1: जी
0: हैं?
1: हाँ शाम को आ जाते हैं हम लोग का मीटिंग, शाम को रखते हैं तो शाम को 4:30-5 बजे तक आ जाते हैं सारे महिलाएं
0: जी, तो हमें और बताइए कि अभी जैसे आपने हाथ के काम सीखे,
1: जी।
0: तो उसको सीखने के वक्त आपको कुछ परेशानियां हुई, कुछ आपको लगा कि हाँ ये मुश्किल है लेकिन हम इसे कैसे ठीक कर पाएंगे, ऐसा कुछ लगा आपको
1: नहीं,
0: भी?
1: मैं फर्स्ट टाइम में जब सीखने जा रहे थे बहुत, मतलब मशीन थोड़ा बड़ा से था, डर भी लगता था काटेंगे कैसे करके, पर 2-3 दिन जाते जाते वो हाथ बैठ गया हम
0: क्या
1: लोग
0: बहुत
1: का
0: बड़ा मशीन होता है?
1: जी। हाँ बड़ा मशीन होता है
0: अच्छा, तो उसको कैसे उसे ऑन करते हैं और कटिंग करते हैं, ये सब
1: जी
0: आपको सिखाया गया?
1: जी हाँ, कटिंग वगैरह सारा सिखाया गया है
0: जी, तो आपको क्या लगता है कि जब आप CP की ये काम शुरू करेंगी तो
1: जी।
0: आप क्या बनाएंगी, क्या सामग्री आपने बनाने का सोचा है? जैसे आप की चेन सोच रही हैं कि क्या
1: जी
0: सोच रही
1: मैं
0: हैं?
1: कीचेन सोच रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी है और जल्दी बना सकते हैं जी। इयररिंग्स भी बना सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, मशीन में कटिंग वगैरह करना रहेगा
0: तो एक हमारे किसान साथियों को और सुनने वाली जितनी भी महिलाएं हैं
1: जी।
0: उनको आप बताइए कि ये जो प्रोसेस है कोई भी सामग्री को, रॉ प्रोडक्ट से लेके फिनिश प्रोडक्ट आप जो CP का बनाती हो कैसे करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है शुरू से लेके अंत तक?
1: फर्स्ट तो उसको क्लीन करना रहता है, फिर उसके बाद में उसको कटिंग, इयररिंग्स के लिए कटिंग करना रहता है और शेप में लेके आना रहता है मेन तो। और उसके बाद कलर भी चढ़ा सकते हैं इयररिंग्स के,
0: जी
1: उसके बाद चिपका के बस सुखा के थोड़ा रख देते हैं
0: जी तो जो भी अभी जैसे आपको जिसने भी ट्रेनिंग दी है, क्या वो आपको इस काम में आगे बढ़ाने के लिए और मदद करेंगे? जैसे आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा,
1: जी।
0: जैसे CP चाहिए रहेगा, क्या वो आपको देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप इसको और आगे बढ़ा सके?
1: अभी तक तो ऐसे कुछ बोले नहीं है कि रॉ मटेरियल्स देंगे, तो
0: जी,
1: अपना मतलब कहीं जानते हैं तो वो लेके अपना बना सकते
0: बना
1: हैं
0: सकते हैं
1: जी।
0: जी। तो फिर और हमें बताइए कि आपके बाकी सारे मेंबर्स और क्या क्या काम करते हैं?
1: वो भी कुछ कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं प्राइवेट
0: जी,
1: वर्क।
0: तो ग्रुप को और बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है, आप क्या सुझाव देंगी?
1: मतलब काम करना चाहिए उसमें
0: जी
1: मिलके, तो उसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा
0: जी सपना जी, और हम अच्छे से जानना चाहेंगे कि ये जो अभी SHG से जुड़ने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और SHG से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी हुई?
1: SHG के बाद। जुड़ने के बाद मुझे मतलब काम करने मिला, मौका मिला। इससे पहले मैं काम कर रही थी डाटा एंट्री का
0: जी
1: 2-3 साल पहले, उसके बाद फिर घर में थी, उसके बाद फिर अभी स्टार्ट करे हैं।
0: तो ये बताइए कि महिलाएं जो हैं हाथ की कारीगरी सीखना उनके लिए कितना ज़रूरी है?
1: बहुत ज़रूरी है, वो छोटे छोटे काम करने से अपना इनकम खुद कमा सकते हैं, इनकम ला सकते हैं, उनकी पहचान तो बढ़ेगी है हाथ के
0: जी
1: काम करने से।
0: जी बिल्कुल, हमें ये बताइए कि SHG से जुड़कर आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं?
1: बहुत सारे फायदे हुए, हम लोग स्टॉल भी लगाए थे, 5 डेज का स्टॉल था,
0: जी
1: उससे बहुत सारा इनकम आया है
0: जी तो स्टॉल आपने जहाँ पे लगाया, ये जो स्टॉल लगाने का जो तरीका होता है वो आप अपने से जाते हैं कि आपको बताया जाता है?
1: नहीं, हमें बताया जाता है नाबार्ड की तरफ से, थ्रू से इन्फॉर्म किया जाता है कि आज स्टॉल है,
0: जी, कहाँ पे प्राय आपने स्टॉल
1: ये
0: लगाया
1: मैरीना
0: है?
1: पार्क का वहाँ पर लगता है स्टॉल
0: जी, तो हमेशा आप लगाते हैं वहाँ पे?
1: जी, अभी हमेशा लगा रहे हैं हम लोग
0: जी, तो कैसे आपको उसका बेनिफिट होता है, उसमें
1: जी। हाँ बेनिफिट हो रहा है
0: बेनिफिट हो रहा
1: जी।
0: है, तो आगे की आप क्या सोच रही हैं फ्यूचर?

0: के लिए आप क्या सोच रही हैं?
1: मैं सोच रही हूँ स्टॉल लगाने के लिए फास्ट फूड का,
0: जी कहाँ पे आप सोच रही हैं?
1: जहाँ मिलेगा वहीं लगा लेंगे, जैसे
0: जी
1: मेरीना पार्क हो गया, जेल हो गया, फ्लैग
0: जी
1: पॉइंट हो गया, जहाँ
0: जी
1: देंगे वहाँ लगा लेंगे।
0: तो आपने वो स्टॉल में क्या रखने का सोचा है?
1: सबसे पहले तो दही बड़ा रखेंगे हम,
0: जी
1: जो मुझे बहुत अच्छा से बनाना आता है,
0: जी
1: समोसा चाट बनाएंगे, और लड्डू वगैरह, लड्डू है, रागी का लड्डू है, नारियल लड्डू है, वो सब रखेंगे
0: सब रखेंगे।
1: जी, सारा
0: चलिए
1: आइटम रखेंगे।
0: जी, बिल्कुल सपना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो सपना जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमसे इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

भाइयों, अभी आपने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक महिला श्रीमती सपना जी से मुलाकात की और जाना कि एसएचजी ग्रुप के साथ जुड़कर वो किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। और साथियों, अब आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का।

गीत आपने सुना, हम उम्मीद करते हैं इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। भाइयों, अब एक नजर डाल लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम के अनुमानों पर। साथियों, अगले दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रुक रुक के बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान लगभग 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 12 से 16 अगस्त के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने तथा रुक रुक कर बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी जाती है। विशेषकर निचले खेतों और सब्जी की फसलों में पानी जमा न होने दें। बारिश के कारण खेतों में नमी अधिक रहने पर फफूंद जनित रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए किसान नियमित रूप से फसल की निगरानी करें और रोगग्रस्त पत्तियों एवं पौधों को अलग करें। उर्वरकों का प्रयोग तेज बारिश से ठीक पहले ना करें, क्योंकि पोषक तत्व पानी में बह सकते हैं। इसी तरह बारिश के दौरान कीटनाशक या फफूंद नाशक का छिड़काव ना करें। मौसम साफ होने और पर्याप्त सूखा मिलने पर ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही पौध संरक्षण का कार्य करें। इस दौरान केला, नारियल और अन्य बागवानी फसलों में जल निकासी पर विशेष ध्यान दें तथा कमजोर पौधों को सहारा दें। खेतों की मेड़ और नालियों की भी समय समय पर सफाई करते रहें। इसके साथ साथ भारी बारिश या गरज चमक के समय खुले खेत में काम करने से बचें। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मौसम परामर्श। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बता दें कि कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था, सिगाटोका किस पौधे की बीमारी है, काजू, केला या फिर आम? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, सिगाटोका केले में लगने वाली एक बीमारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी।

0: और भाइयों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी का सफर यहीं पर होता है खत्म। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के आवाज़ों में अभी आपने सुना आनंद बख्शी का लिखा ये कवाली अमर अकबर एंथोनी फिल्म से। संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में एक कव्वाली सुने थे जिसे शौकत अली ने लिखा है और इसे गाया है कादर गुलाम मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा ने, और इसे लिए है हमने फिज़ा फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी से लिखा इस कव्वाली को गाया है आशा भोसले, भूपेंद्र सिंह, ऋषि कपूर और साथियों ने। जमाने को दिखाना है फिल्म के लिए इसे संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप महफिले कवाली कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज 7:30 पर युववाणी के तहत आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम। इसमें आप सदाबहार मस्त मौजी अभिनेता शम्मी कपूर और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो पर वार्ता सुनेंगे।

कल सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का सारंगी वादन आप सुनेंगे।

कल शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश आप सुनेंगे।

0: 100.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लगातार व्यवधानों के बीच संपन्न हुआ संसद का मानसून सत्र, 19 बैठकों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्रियों ने तिरंगा फहराकर देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस समारोहों के सीधे प्रसारण की तैयारियां पूरी, कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। और सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अंडमान निकोबार की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। संसद का मानसून सत्र आज हंगामे और व्यवधानों के बीच संपन्न हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 19 बैठकों और 25 दिनों के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र के दौरान लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए, जबकि दोनों सदनों में 12 विधेयक पारित किए। इनमें सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, एमएसएमई विकास अधिकरण सुधार तथा खान और खनिज विकास से जुड़े संशोधन विधेयक प्रमुख हैं। हालांकि लगातार व्यवधानों के कारण कई विधेयकों पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य खनन क्षेत्र को अधिक कुशल और निवेश अनुकूल बनाना तथा महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है और राज्यों के साथ राजस्व साझाकरण बढ़ाया है। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने संघवाद, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जगा रहा है। नई दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सभी नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के खेल अनुभाग की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस और आगामी SGFI 2026 के अवसर पर 19 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए अंतर विद्यालय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता सह चयन परीक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता 18 से 25 अगस्त तक श्री विजयपुरम के भातुबस्ती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मैदान में होगी। प्रतियोगिता में दक्षिण अंडमान क्षेत्र के विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों

में खेल भावना, शारीरिक दक्षता, टीम भावना और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण और सांसद। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस भी एफएम रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम 7 बजे भारत की राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी में इसका प्रसारण होगा। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण सुबह 6:25 से समारोह के समापन तक दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। राजधानी श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम से राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाइव प्रसारण सुबह 8:50 से कार्यक्रम के समापन तक होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का पुनः प्रसारण होगा। इसका दोबारा प्रसारण भी 16 अगस्त को सुबह 8 बजे से किया जाएगा। सांसद विष्णुपद रे ने हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की मंजूरी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4/2024 के दिशा निर्देशों के तहत केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा भेजे गए 181 ग्रामीण सड़क प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि अब तक इनमें से केवल 44 सड़कों को मंजूरी मिली है, जबकि बाकी 137 सड़कों पर संशोधित दिशा निर्देशों के तहत विचार नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मामलों का संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही प्रशासन के अधिकारियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सांसद विष्णुपद रे के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। कृषि विभाग ने कार्निकोबार और नानकोड़ी द्वीप समूह में किसानों के बीच टिकाऊ, रसायन मुक्त और जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रमाणन के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सहभागी गारंटी प्रणाली के माध्यम से जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से किसानों को संस्थागत सहायता के साथ जैविक उपज के मूल्य संवर्धन और सीधे विपणन के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसका उद्देश्य पारंपरिक जैविक खेती को मजबूत करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और क्षेत्र की स्वदेशी कृषि पद्धतियों का संरक्षण करते हुए सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के श्री विजयपुरम स्थित CSLAN शिप रिपेयर यूनिट में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के एक पद पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कोचीन शिपयार्ड की वेबसाइट उपलब्ध है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को फिनिक्स बे और बम्बूफ्लाट के बीच अतिरिक्त फेरी सेवाएं संचालित की जाएंगी। जहाजरानी सेवा निदेशालय के अनुसार ये अतिरिक्त फेरी सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगी। इससे बम्बूफ्लाट और आसपास के क्षेत्रों से आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। श्रावण मास के अवसर पर चिन्मय मिशन द्वारा 16 अगस्त को सुबह 9:30 से मिशन सभागार में पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया जाएगा। शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी की व्यवस्था मिशन की ओर से की जाएगी। श्रद्धालुओं से पूजा सामग्री अपने साथ लाने का अनुरोध किया गया है। अधिक जानकारी के लिए श्रद्धालु फोन संख्या 9434262907 पर संपर्क कर सकते हैं। श्री वेट्रीमलई मुर्गन मंदिर RGT रोड में देवी श्री अन्नई कामाक्षी को समर्पित

0: में आड़ी महोत्सव का आयोजन कल किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार व्यवधानों के बीच संपन्न हुआ संसद का मानसून सत्र, 19 बैठकों में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्रियों ने तिरंगा फहराकर देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की तैयारियां पूरी, कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। और सांसद विष्णुपद रे ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अंडमान निकोबार की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
2: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
3: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
5: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
1: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
6: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
7: यन पॉलिसी यन कयल।
1: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
8: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
9: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम और जलयानों की यात्रा कार्यक्रम। पहले मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन सेवाओं को बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, जबकि मछुआरों को सलाह दी जाती है कि हवा की गति 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी, इसलिए वह 12 से 15 अगस्त तक समुद्र में ना जाए। ये था मौसम का हाल। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मायाबंदर होते हुए दिगलीपुर की यात्रा पर एमवी रानी लक्ष्मी कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी शनिवार 15 तारीख को सुबह 7 बजे दिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नालंदा लिटिल अंडमान के लिए कल रात 9 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा। जलयान शनिवार सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी बाराटंग कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। जलयान कल

दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही शाम 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। इस बीच ये जलयान दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम की वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल शाम 5 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और उसकी वापसी शनिवार 15 को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। ये थे जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 है। अब सुनिए फिल्मी गीत। सबसे पहले हम सुना रहे हैं एआर रहमान, अनुराधा पौडवाल और अनुपमा के आवाजों में दिल से फिल्म का गीत।

अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के आवाजों में आनंद बख्शी की रचना। धुन तैयार किया है विजय शाह ने और फिल्म का नाम है बुलंदी।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, तिरंगा केवल तीन रंगों का झंडा नहीं, बल्कि यह भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करने का एक सुंदर प्रयास है। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराकर देश के प्रति सम्मान और गौरव व्यक्त करना है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग से बना है, जिसके मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है। केसरिया साहस और त्याग, सफेद शांति एवं सत्य तथा हरा रंग समृद्धि और प्रकृति का प्रतीक है। वहीं अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर घर तिरंगा हमें यह संदेश देता है कि हमारी पहचान अलग अलग होते हुए भी हमारी राष्ट्रभक्ति एक है। तिरंगा हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाता है। जहां तिरंगा शान से लहराता है, वहां भारत का गौरव मुस्कुराता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आज इस माह का दूसरा गुरुवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, कुछ कलाकार केवल अभिनय नहीं करते, वे अपने अंदाज से एक पूरा दौर बना देते हैं। हिंदी सिनेमा के सदाबहार, मस्त मौला और ऊर्जावान अभिनेता शम्मी कपूर ऐसे ही कलाकार थे, जिन्होंने अपनी अनोखी अदाकारी, शानदार नृत्य और चुलबुले अंदाज से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनकी मुस्कान, उनका जोशीला व्यक्तित्व और पर्दे पर उनकी उपस्थिति आज भी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की याद दिलाती है। शम्मी कपूर का नाम आते ही आंखों के सामने एक सितारा उभरता है, जिसने जिंदगी को पूरे जोश और अंदाज के साथ जिया। तो आइए दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आपको सुनवाते हैं दीपक कुमार सिंह द्वारा यह लघु रूपक सदाबहार मस्त मौजी अभिनेता शम्मी कपूर।

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही अपने व्यक्तित्व और अंदाज से दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। शम्मी कपूर भी ऐसे ही सदाबहार कलाकार थे। उनका नाम लेते ही एक ऐसा अभिनेता याद आता है जो अपनी बेफिक्र अदाओं, मस्त मौला स्वभाव, अनोखी नृत्य शैली और चुलबुले अभिनय के लिए जाना जाता था। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला ऐसा अभिनेता माना जाता है जिसने पर्दे पर युवाओं की बेचैनी, उत्साह, प्रेम और आज़ादी की भावना को एक बिल्कुल नए अंदाज में प्रस्तुत किया। उनकी ऊर्जा इतनी जीवंत थी कि दर्शक उन्हें देखते ही उनकी मस्ती में शामिल हो जाते थे। यही कारण है कि शम्मी कपूर को प्यार से याहू स्टार और हिंदी सिनेमा का एल्विस प्रेस्ली भी कहा जाता है। उन्होंने अपने अभिनय से पूरी पीढ़ी के नायक की परिभाषा बदल दी।

कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध कपूर परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे। अभिनय उनके लिए केवल पेशा नहीं बल्कि परिवार की विरासत थी। शम्मी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत सन 1950 के दशक में की। शुरुआती दौर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लगातार सफलता नहीं मिली। उस समय हिंदी फिल्मों में नायक की एक पारंपरिक छवि हुआ करती थी, गंभीर, शांत और आदर्शवादी। शम्मी कपूर इस छवि में पूरी तरह फिट नहीं बैठते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को अपनी पहचान बनने दिया। उन्होंने अपने अंदाज, आवाज, हाव भाव और नृत्य को अपनी ताकत बनाया और धीरे धीरे दर्शकों के दिलों में अपनी अलग जगह बना दी।

शम्मी कपूर की करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ फिल्म तुमसा नहीं देखा से आया। इस फिल्म ने उन्हें एक नए रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। उनकी हेयर स्टाइल, कपड़े, नृत्य और शरारती अंदाज ने युवाओं को खूब आकर्षित किया। इसके बाद फिल्म दिल दे के देखो ने उनकी लोकप्रियता को और मजबूत किया। वे पर्दे पर केवल अभिनय नहीं करते थे, बल्कि हर दृश्य में अपनी पूरी ऊर्जा भर देते थे। उनके चलने, मुस्कुराने, आँखों से इशारे करने और नृत्य करने का अंदाज इतना अलग था कि दर्शक उन्हें देखकर तुरंत पहचान लेते थे। यही वह दौर था जब शम्मी कपूर ने साबित किया कि नायक बनने के लिए केवल पारंपरिक सुंदरता या गंभीर व्यक्तित्व ही जरूरी नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान और आत्मविश्वास भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

शम्मी कपूर की फिल्मों में प्रेम की अभिव्यक्ति भी अपने आप में अनोखी थी। वे पर्दे पर प्रेम को संकोच और गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्साह, शरारत और मस्ती के साथ प्रस्तुत करते थे। जंगली फिल्म में उनका याहू वाला अंदाज आज भी हिंदी सिनेमा की यादगार छवियों में शामिल है। इस फिल्म ने उन्हें एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, राजकुमार, ब्रह्मचारी, एन इवनिंग इन पेरिस और तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। खास तौर पर तीसरी मंजिल में उनके अभिनय और नृत्य ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। उनके किरदारों में एक ऐसी बेफिक्री दिखाई देती थी जो उस समय के युवाओं को अपनी ओर खींचती थी।

शम्मी कपूर के अभिनय की सबसे बड़ी विशेषता उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। वे संवाद बोलते समय केवल शब्दों पर निर्भर नहीं रहते थे, उनके हाथों की हरकत, चेहरे के भाव, आंखों की चमक और शरीर की लय सब मिलकर उनके अभिनय को जीवंत बना देते थे। उनका नृत्य भी किसी निर्धारित शैली में बंधा हुआ नहीं था, वे संगीत को महसूस करके अपने शरीर को उसकी धुन पर छोड़ देते थे। इसी वजह से उनके नृत्य में एक स्वाभाविक मस्ती दिखाई देती थी। उनके ऊपर फिल्माए गए गीतों में उनकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता था। वे कोरियोग्राफी को केवल दोहराते नहीं थे, बल्कि उसमें अपना अंदाज जोड़ देते थे। यही कारण है कि दशकों बाद भी उनकी नृत्य शैली लोगों को आकर्षित करती है।

शम्मी कपूर की जोड़ी कई अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई, आशा पारीख, शर्मिला टैगोर, साधना और कई अन्य अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर बेहद लोकप्रिय रही। उनकी फिल्मों में रोमांस के साथ साथ हास्य और रोमांच का भी सुंदर मेल दिखाई देता था। वे एक ऐसे नायक थे जो कभी पहाड़ों पर नाचते नजर आते, कभी क्लब में अपनी मस्ती दिखाते और कभी किसी खूबसूरत जगह पर प्रेम का इजहार करते। उनके दौर में फिल्मों का संगीत भी बेहद समृद्ध था और शम्मी कपूर ने उस संगीत को अपनी अदाओं से यादगार बना दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और शम्मी कपूर का पर्दे पर प्रदर्शन एक ऐसी जोड़ी बना गई थी जिसने हिंदी फिल्म संगीत को एक अलग पहचान दी। उनके गीत आज भी पुराने दौर के संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं।

हालांकि शम्मी कपूर को मुख्य रूप से रोमांटिक और मस्त मौला नायक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके अभिनय का दायरा इससे कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने हास्य, गंभीरता, भावनात्मकता और चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने अभिनय के रंग को बदला और चरित्र अभिनेता के रूप में भी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधाता, बेताब, प्रेम रोग, इजाजत और बाद की कई फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। इससे यह साबित हुआ कि शम्मी कपूर केवल एक स्टार नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे जो समय के साथ स्वयं को बदलना जानते थे। उन्होंने अपने करियर के अलग अलग पड़ावों पर दर्शकों को अपने अभिनय के नए रूप दिखाए।

पर्दे पर हमेशा खुश मिजाज और मस्ती से भरे दिखाई देने वाले शम्मी कपूर वास्तविक जीवन में भी तकनीक और नई चीज़ों के प्रति बेहद उत्सुक थे। वे इंटरनेट और कंप्यूटर के शुरुआती दौर में ही इसके महत्व को समझने वाले भारतीय फिल्म कलाकारों में शामिल थे। उन्हें तकनीक के साथ प्रयोग करना पसंद था और वे इंटरनेट की दुनिया में भी सक्रिय रहे। यह उनकी जिज्ञासु और आधुनिक सोच को दर्शाता है। वे केवल अपने पुराने स्टारडम में जीने वाले कलाकार नहीं थे, बल्कि बदलते समय को समझने और उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करते रहे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि उम्र बढ़ने के साथ जिज्ञासा और सीखने की इच्छा कम नहीं होनी चाहिए।

शमी कपूर का निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। जीवन में व्यक्तिगत दुख और कठिनाइयां आने के बावजूद शमी कपूर ने अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखा। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। वे जीवन को पूरी तरह जीने में विश्वास रखते थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी सहजता थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वे मानते थे कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, इंसान को अपने भीतर की खुशी और उत्साह को जीवित रखना चाहिए। शायद यही कारण है कि आज भी उनका नाम लेते ही हमारे मन में एक मुस्कुराता हुआ, ऊर्जा से भरा चेहरा उभर आता है।

14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका जादू खत्म नहीं हुआ। उनकी फिल्में, उनके गीत, उनका नृत्य और उनकी मस्त मौजी अदाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं।

रिमी कपूर ने हिंदी सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं दिया बल्कि नायक को एक नई पहचान दी। एक ऐसा नायक जो प्रेम कर सकता है, शरारत कर सकता है, खुलकर हंस सकता है और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकता है। वे सही मायनों में सदाबहार मस्त मौजी अभिनेता थे। उनका याहू केवल एक संवाद नहीं बल्कि उनकी पूरी शख्सियत का प्रतीक बन गया। शम्मी कपूर का सिनेमा हमें यह संदेश देता है कि जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि उत्साह और मुस्कान के साथ जीना चाहिए। यह उनकी सबसे खूबसूरत विरासत है और यही वजह है कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें उसी प्यार और मुस्कान के साथ याद करती रहेगी।

सदाबहार मस्त मौजी अभिनेता शम्मी कपूर। दोस्तों, अभी आप दीपक कुमार सिंह द्वारा यह लघु रूपक सुन रहे थे। तो दोस्तों, अब पेश है एक ऐसा सदाबहार गीत जो आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। यह खूबसूरत गीत सन 1969 में आई अभिनेता शम्मी कपूर की फिल्म प्रिंस से लिया गया है। इस गीत को अपनी जादुई आवाज दी है मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब ने। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं शम्मी कपूर पर फिल्माया गया यह बेहद खूबसूरत नगमा।

राष्ट्र केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवंत चेतना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्री अरविंदो घोष का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी विचारक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपने विचारों और लेखनी के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त सन 1872 को कलकत्ता में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा में कार्य किया और इसी दौरान भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रवाद से गहराई से जुड़े। उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया। बंगाल विभाजन के समय श्री अरविंदो ने स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा जैसे आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन जागृति फैलाने का कार्य किया। उनके लेखों में देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की प्रबल भावना दिखाई देती है। सन 1908 के अलीपुर बम कांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल का समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उनका झुकाव आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ा। बाद में वे पौंडीचेरी चले गए, जहां उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक चिंतन और लेखन को समर्पित किया। उन्होंने द लाइफ डिवाइन और सावित्री जैसी महान रचनाएं लिखी। उनका मानना था कि भारत की वास्तविक उन्नति केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं बल्कि आत्मिक और नैतिक जागरण से भी होगा। 5 दिसंबर सन 1950 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी देशवासियों को राष्ट्रप्रेम, आत्मविश्वास और आत्म जागरण की प्रेरणा देते हैं। श्री अरविंदो का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पण और उसके उज्जवल भविष्य के निर्माण में निहित है।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्र पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दें। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8 बजने को है। खुशी पलों में आप सुनेंगे संसद समीक्षा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

जी आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा का 271वां सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान उच्च सदन की उत्पादकता महज 39.17% रही। उच्च सदन में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तथा नीट प्रश्न पत्र लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के कारण उच्च सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के बीच आज तक गतिरोध दूर करने पर सहमति न बन सकी। बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले उच्च सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 12 अगस्त को पारित हो चुका है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एक रूपता को सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लिए कोयला बेहद महत्वपूर्ण है और भारत में बिजली उत्पादन का 73% कोयले से होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए बिजली की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कोयला ब्लॉकों का आवंटन घोटाला था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में खनिजों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नीलामी के माध्यम से किया गया है और पहले के विपरीत अब किसी ब्लॉक का आवंटन नामांकन के आधार पर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 65% से बढ़कर 85% हो गई है, जबकि कोयला राजस्व में उनकी हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 96% हो गई है। मंत्री ने कहा कि केंद्र को खनिज राजस्व का केवल करीब 11% हिस्सा ही मिलता है, जबकि 88% हिस्सा तो राज्यों के पास चला जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा। रेड्डी ने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि ये संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को विनियमित करने और उसके विकास के लिए कराधान एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाजपा के तरुण चुग, बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी, अंधना द्रुमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के

डॉक्टर वी शिवादासान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रमुक के एसआर शिवलिंगम और डीएमडी के सदस्य एल के सुधीश ने हिस्सा लिया। कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग भी की। रेड्डी ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में राजकोषीय व्यवस्था को निश्चित, स्थिर और पूर्वानुमेय बनाने से राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को बढ़ावा मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद मिलेगी। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन ने द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजने के लिए पेश संशोधन को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कुछ विपक्षी सदस्यों ने संशोधन पर मत विभाजन की मांग की, लेकिन सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में हंगामे के बीच ऐसी प्रक्रिया कराई नहीं जा सकती। इससे पूर्व सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। खड़गे ने मांग की कि हल्द्वानी में मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना की निंदा की। सदन के नेता नड्डा ने कहा, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभापति राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा की और सरकार से मामले की जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता एक अपराध है, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हुए राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने और भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के अनुरूप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% रही। हालांकि व्यवधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अपने परंपरागत संबोधन में राधाकृष्णन ने कहा कि राज्यसभा के 271वें सत्र के समापन पर मैं इसकी कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। ये खेद का विषय है कि सत्र लगातार अव्यवस्था और बार बार हुए व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिससे सदन का कामकाज बार बार बाधित हुआ। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य कार्य घंटों के नुकसान के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और बहस का अवसर भी सदन को न मिल सका। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। सभापति ने कहा कि व्यवधानों के बावजूद सदन अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और 12 विधेयकों पर विचार करने के साथ उन्हें पारित किया गया या लोकसभा को लौटाया गया है। इनमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान या इसके गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रावधान वाला राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रावधान वाला केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही में हम सभी सामूहिक रूप से भाग लेते, अपने बहुमूल्य सुझाव देते और सार्थक विचार विमर्श में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। राधाकृष्णन ने बताया कि सदन में सिर्फ 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ और इसकी उत्पादकता 39.17% रही।

उन्होंने बताया कि सदन के दौरान 285 तारांकित प्रश्न, शून्यकाल के तहत 380 विषय और विशेष उल्लेख के जरिए 380 मुद्दे उठाने का अवसर था, लेकिन इनमें से केवल 16 प्रश्न, शून्यकाल के तहत 52 विषय और 93 विशेष उल्लेख ही सदन में किए जा सके। सभापति ने कहा कि सदस्यों ने लोगों की आवाज को उठाने के लिए उपलब्ध अवसरों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन के वरिष्ठ सदन के रूप में इस गरिमापूर्ण सदन की तर्कपूर्ण बहस, गरिमामय असहमति और विचारशील कानून निर्माण को बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी है। बार बार होने वाले व्यवधान अंततः लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। उन्होंने सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने तथा संस्था की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करने का आह्वान किया। सभापति ने बताया कि नवनिर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए 2 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य प्रणाली, प्रक्रिया और सदस्यों से अपेक्षित आचरण के मानकों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में 35 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राधाकृष्णन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस गरिमापूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपनी संसदीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के एक नए संकल्प के साथ मिलेंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और हमारा लोकतंत्र हमेशा मजबूत होगा। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। इसके लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता 19% रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति बन नहीं पाई है। मॉनसून सत्र के दौरान केवल 28 और 29 जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला था, जब लगभग 10 घंटे तक लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई थी। मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही 11 बजे प्रारंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने को कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वो अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन की रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता और सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता केवल 19% रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र बीते 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वो छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं तथा वो इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार बार प्रश्नकाल चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्रवाई में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक ये गतिरोध टूट न सका। सदन ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी।

0: लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमलों की बरसी पर 6 अगस्त को पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति एवं सौहार्द के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अध्यक्ष बिरला ने सदन में कुछ दिन प्रश्नकाल के दौरान ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में। इब्राहिम अक्ष का लिखा और संगीत दिया है। फिल्म का नाम है बेटा।

0: अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के युगल स्वरों में बेटा फिल्म का गीत।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। अपग्रेड टू द बोल्ड एंड टेकी न्यू एज बलेनो एंड गेट अमेजिंग बेनिफिट्स, इजी फाइनेंस ऑप्शंस एंड इनक्रेडिबल एक्सचेंज डील्स। रश टू योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम टुडे एंड टेक होम द न्यू एज बलेनो विद अमेजिंग ऑफर्स एंड अ 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर वारंटी। TNC अप्लाई।
2: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: अब सुनिए एक सूचना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का DD के श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम से 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी DD के श्री विजयपुरम के YouTube चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक DD के श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसके पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को DD के श्री विजयपुरम सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारण करेगा। अब एक और सूचना सुनिए। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश का हिंदी और अंग्रेजी में DD के श्री विजयपुरम द्वारा प्रसारित किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वरों में इस गीत को सुनिए, आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से। इसे लिखा है इब्राहिम अक्ष ने।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं. और माइलेज भी बढ़िया है. 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी CNG में. बाय ऑफर्स अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.
3: आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म के गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है. आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है. रात के 8:30 हुए हैं. अब सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान, लेकिन पहले अंतराल के बाद.
4: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie

0: New Age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the New Age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa. भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनके सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1-7 अगस्त 2024 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें।
2: करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ईबीएस और ईएसपी हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी सीएनजी में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
3: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
1: भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का

0: अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम यानी प्रॉपर चैनल से अवसर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6-स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर अप टू 80,000।
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
0: अब सुनिए गौरव गान।

अभी आप रोजगार समाचार और गौरवगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास

0: विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
1: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में

0: फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप

0: अनुसंधान विभाग में सचिव एवं ICMR महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान को नई दिशा देने और देश के युवाओं को विज्ञान तथा अनुसंधान से जोड़ने की दिशा में ICMR लगातार महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शाइन 2026, शाइन मतलब साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर्स का दूसरा संस्करण 11 और 12 अगस्त को देश भर में आयोजित किया गया। देश के 83 ICMR केंद्रों पर स्कूली बच्चों को प्रयोगशालाओं में जाने, वैज्ञानिकों से बातचीत करने और स्वास्थ्य अनुसंधान को सीधे तौर पर समझने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के केलोंग से लेकर केरल तक और दमन दीव से लेकर नागालैंड तक देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग 30,000 बच्चे इस पहल से जुड़े हैं और इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर बहल, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर बहल, सबसे पहले शाइन 2026 के सफल समापन पर आपको ढेर सारी बधाई हो। दो दिनों तक ये चला, देश भर के 83 केंद्रों पर हजारों स्कूली बच्चों ने ICMR की प्रयोगशालाओं और अनुसंधान गतिविधियों को करीब से देखा। आपके लिए इस पूरे कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव क्या रहा?
2: ये कार्यक्रम हमने पिछले साल शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि हर युवा को, हर स्कूली बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए कि वो एक दिन एक साइंटिस्ट की तरह व्यतीत करे, कम से कम साल में एक बार। तो इससे प्रेरित होकर हमने ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल 30,000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। और जो मेरा अनुभव अपना रहा इसमें, जो सबसे ज्यादा जिसने मुझे इम्प्रेस किया, वो ये था कि बच्चों की जिज्ञासा जो हमने देखी और जिस तरह के सवाल उन्होंने पूछ रहे थे मुझसे भी, क्योंकि मैंने भी पर्सनली दिल्ली में कुछ बच्चों से इंटरैक्ट किया, और जिस तरह के सवाल वो प्रयोगशाला में और जो एग्जीबिशन लगी थी उनमें और जो साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन में जिस तरह से सवाल पूछ रहे थे, उसको पूछ के बहुत ही प्रसन्नता हुई के बच्चों में इतनी जिज्ञासा है, इतना कुछ वो जानना चाहते हैं और इतने अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिया, और बहुत अच्छा फीडबैक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये हमें दिया है कि उनको इस प्रोग्राम से आने से उनको कितना अच्छा इस बारे में लगा और आगे उनकी सोच पे इसका क्या असर।
1: बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे देश के असली भविष्य है। डॉक्टर बहल, क्या बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा जो आपको अभी तक याद है?
2: एक्चुअली 3 बच्चों ने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगा कि कोई बड़ा साइंटिस्ट भी पूछ सकता है ऐसे सवाल, इतने अच्छे सवाल थे। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हम ICMR कैसे आगे आने वाले किसी भी महामारी के लिए तैयारी कर रहा है, कैसे हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे, कैसे हम जल्दी कोई डायग्नोसिस बना पाएंगे, इसके लिए ICMR क्या कर रहे हैं। तो इतना अच्छा सवाल था क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये और ICMR इस एरिया में इतने अच्छे काम कर रहा है पहले से ही। तो मैंने अच्छे से बच्चों को इस बारे में समझाया कि किस तरह हम महामारियों को और कोई भी आने वाली बीमारी को, नई बीमारी को किस तरह से ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारे देश के होने वाले नागरिक, जो विकसित भारत के शायद पहले नागरिक होंगे, वो बच्चे इस तरह का बहुत ही जिम्मेवारी वाला सवाल पूछा उन्होंने। इसी तरह एक बच्ची ने पूछा कि वायरस और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है, और जैसा आपको पता है कि अभी ही हाल ही में HPV वैक्सीन लॉन्च हुई है, और ना मुझे अच्छा लगा कि बच्ची पूछ रही है कि कैसे वायरस जो है वो कैंसर करता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर उसने ये भी पूछा कि क्या कैंसर की कोई नई तरह की वैक्सीन बन रही है। तो मुझे ये सब चीजें तो कटिंग एज है और बच्चों की ऐसी जिज्ञासाएं हैं, तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उनको इसका जवाब देने में मुझे अति प्रसन्नता हुई कि किस तरह से हम कैंसर को, जैसे सर्वाइकल कैंसर या हेपेटिक कैंसर को वैक्सीन के जरिए हम रोक सकते हैं, किस तरह से जो इम्यूनिटी हमारी है, इम्यून सिस्टम है, वो हमारे को कैंसर से बचाता है, और हम किस तरह से उसके ऊपर

countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शाइन 2026 युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान

0: नए ट्रीटमेंट्स कैंसर के ला रहे हैं और पूरे
1: जी
0: विश्व में कैंसर पे किस तरह का रिसर्च हो रहा है ये बताने का मुझे मौका मिला ऐसे प्रश्न को पूछ सुनने से। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने उनके देखे जब मैं प्रयोगशाला में गए और वहां पर पूछ रहे थे कि जिस तरह मस्कीटो का लाइफ साइकिल है इसका क्या मतलब होता है, क्या ये सिर्फ जो अंडे हैं ये सिर्फ पानी में पनपते हैं, उस तरह उन्होंने देखा कि किस तरह से ये होता है। तो ये सब चीजें देख के बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल। आपसे अगला सवाल हमारा ये है कि शाइन में कक्षा 9 से कक्षा 12 के विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत का अवसर मिला। क्या आपका मानना है कि ऐसी पहल से बच्चे साइंस को केवल अब एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि करियर और नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना शुरू कर चुके हैं?
0: जब किसी चीज को बच्चा देखता है और एक अपने स्कूल में एक विषय की तरह देखता है, एक किताब पढ़ के देखता है और कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता है, लेकिन जब वो आके ये देखता है कि किस तरह से रिसर्च जो चीजों को चेंज कर रही है, कोई नई चीज, नया डायग्नोस्टिक या नई वैक्सीन बनाने में मदद कर रही है, तो उस एज पे उसके दिमाग पे उसका एक बहुत अच्छा और बहुत गहरी छाप पड़ती है और उससे उसकी ना सिर्फ जिज्ञासा बढ़ती है बल्कि उसको ये भी समझ आने लगता है कि ये भी एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं। यही नहीं कि हम सिर्फ डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या कुछ और इस तरह की अपने प्रोफेशन करें, बल्कि हम साइंटिस्ट भी बन सकते हैं।
1: और इस काम में ICMR, जैसा कि आप बता रहे हैं, बच्चों को मदद करने के लिए बेहद तत्पर है। डॉक्टर राजीव बहल, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जिनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रेसिजन मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ बड़ी तेजी से स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल रहे हैं। क्या AI और नई टेक्नोलॉजीज के आने से आने वाले सालों में भारत के हेल्थ रिसर्च को कोई इसमें फंडामेंटल चेंजेस, बदलाव आ सकता है?
0: बदलाव आ सकता है और अवश्य ही आएगा क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज भारत ने अपने आप भी विकसित किए हैं, अपनी हमारी जिस तरह की कैपेसिटीज डेवलप हुई हैं इस देश में पिछले सालों में जब से हम आजाद हुए हैं, तब से हम अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक दशक में खास तौर एक तरह का कॉन्फिडेंस जो आया है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ इसको यूज करेंगे बल्कि हम इसमें अग्रसर रहे। जिस तरह से भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी में उदाहरण के तौर पे UPI को यूज करके जिस तरह से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल उसमें अपना सिक्का जमाया पूरे विश्व में, इसी तरह से भारत डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम हेल्थ केयर को इम्प्रूव करेंगे ये ऑलरेडी हो रहा है और मेरा ये मानना है कि जिस तरह जीनोमिक्स इंडिया में हो रहा है, ऐसा इस तरह की चीज जो आज हम कर रहे हैं वो हम वही सब कर रहे हैं जो विश्व में कहीं भी ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं वो हमारे पास भी उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज भी स्वास्थ्य से एक तरीके से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण नई तरह के की हेल्थ चैलेंजेस, इन्फेक्शस डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। ICMR इन इमर्जिंग हेल्थ थ्रेट्स के लिए अपनी रणनीति में, खासतौर पर रिसर्च की रणनीति में, किस तरीके की बदलाव ला रहा है या क्या तैयारी कर रहा है?
0: क्लाइमेट चेंज इसी रफ्तार से होता रहा, इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो ये हमारे लिए कई तरह की प्रॉब्लम्स करेगा। हेल्थ उसमें से एक प्रमुख प्रॉब्लम है जिसको क्लाइमेट चेंज से हमें देखें तो बहुत मुश्किल होने वाली है अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज होता रहा। तो रिसर्च क्या कर रहा है और रिसर्च इस बारे में क्या हम कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने ये एस्टैब्लिश किया है कि इस तरह की वार्मिंग से, इस तरह के क्लाइमेट चेंज से क्या असर आएंगे और क्या असर हो रहे हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीजेज में अब डेंगी जिसको कहा जाता है, जो बुखार आता है डेंगू होता है,
1: जी
0: वह बीमारी जो है वो उन इलाकों में भी बढ़ रही है जहां पहले कभी नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे जो वेक्टर है डेंगू का, जो मच्छर है, वो वैसे वैसे उसका प्रकोप बढ़ रहा है। इसी तरह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे कि कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन, ये बीमारियां जो हैं इनका प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसे ही जो किडनी फेलियर है देश में बहुत तेजी से बढ़

0: रहा है, ये भी डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड काफी इसका प्रभाव रहता है। तो पहली चीज तो हम ये कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हो रहे हैं उसको समझ के वो हम सामने लाए। जो हमारी रणनीति है वो है इनकी एमिलियोरेशन, यानी कि इनको किस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल, एक मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशंस को रखते हुए इनको किस तरह से हम इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा काम करने का समय है, क्या हम उसमें बदलाव ला सकते हैं? क्या हम भरी दोपहर में लोगों को बाहर काम ना करना पड़े इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्या हम इस तरह के घर बना सकते हैं कि जो उस तरह से गर्म ना हो जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी घर होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं?
1: आप मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि उपचार के साथ साथ बचाव यानी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन पर भी आईसीएमआर ध्यान केंद्रित कर रहा है और उसके बारे में भी लोगों को जागरूक बना रहा है।
0: बिल्कुल, ये इंटरवेंशंस जो प्रिवेंशन के हैं और हेल्थ के जो दुष्प्रभाव क्लाइमेट चेंज के हैं उससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसका इलाज, जैसे अगर हीट स्ट्रोक और दूसरी तरह की जो तकलीफें होती हैं उसका इलाज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि हम किस तरह से एक तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको रोकें और दूसरा के उसके प्रभावों को कम करें।
1: डॉक्टर राजीव बहल, यदि शाइन में शामिल कोई 15-16 साल का बच्चा ये कार्यक्रम सुन रहा है और आपसे ये सवाल पूछता है कि मैं अभी से वैज्ञानिक बनने के लिए क्या कर सकता हूं, तो आप उसे क्या सलाह देंगे?
0: तो मेरी सबसे पहली सलाह तो ये है कि अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को बढ़ाइए, उसको सोचिए। ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट को याद करना है, ये सोचिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अगर बच्ची है तो वो क्यों होता है, इसको किस तरह से हम सोचें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ उसको जाके समझ के और कोशिश करें जानने की कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे क्या है और उसको कैसे साइंटिस्ट ने पहचाना। दूसरी चीज ये है कि अपने मन को खुला रखें। अपने को इस वक्त आप 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं, आप अपने को एक क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में, जैसे कि आपने देखा हमारा मैस्कॉट है डॉक्टर क्यूरियो, और उसका नाम ही हमने इसलिए रखा है कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को आप रखें, और आज आपके पास अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने टीचर्स के अलावा, आपके पास और भी बहुत संसाधन हैं, जैसे कि आप एआई अपने किसी पेरेंट्स की मदद से या अपने किसी बड़े की मदद से भी एआई के जरिए भी सीख सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए सीख सकते हैं। तो आप अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके अपने मन को इस तरह से अगर आप सीखेंगे तो आगे जाके आपका वैज्ञानिक बनने का जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा।
1: डॉक्टर राजीव बहल, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए और शाइन के बारे में जानकारी देने के लिए, देश के युवा बच्चे कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे शाइन 2026, युवाओं को स्वास्थ्य अनुसंधान से जोड़ने की पहल पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में सचिव एवं आईसीएमआर महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल के साथ हर्ष रंजन की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
3: कंट्री वाइड

श्रोताओं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम संदेशे आते हैं में। अगर आप भी हमारे जरिए आपका मनपसंद गीत सुनना चाहते हैं तो लीजिए आपका फोन, टाइप कीजिए आपका पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही आपका नाम और पता जरूर शामिल करके हमें भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9474234000।

0: आते हैं।
1: कार्यक्रम में सबसे पहले हमने शामिल किया है सिप्पी घाट से कार्तिक का संदेश से। ये सुनना चाहते हैं ओम शांति ओम फिल्म से के गाया ये गीत।

गैंगस्टर फिल्म का गीत सुनाने का संदेश हमें मिला है स्वराज द्वीप से पायल और उनके दोस्तों का। तो पायल जी, आनंद लीजिए आपके फरमाइशी गीत।

लिटिल अंडमान से संगीता और साथी का संदेश है, रहना है तेरे दिल में फिल्म का गीत सुनवाने का। लीजिए सुनिए बॉम्बे जयश्री की आवाज में ये गीत।

जब वी मेट फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश आते हैं अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अनेक स्थानों पर वर्षा हुई। जन सेवाओं और मछुआरों को बताया जाता है कि हवा की गति 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वह 15 अगस्त तक समुद्र में न जाए। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात के 10:30 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज विविद भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक सम्वत 1948 के श्रावण माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 50 सेकंड हुए हैं। अपनी आज की पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।